सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 22, तदनुसार 12 जून सन 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई

0: सहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
2: जीवन की परवाह, क्योंकि उनके हृदय में असीम करुणा थी। हाँ, वो करुणा ही तो थी जो उमड़ पड़ी थी उनके अंतरतम से। यही करुणा मानव को महामानव बना देती है। तभी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानव जाति के लिए एक दृष्टांत बनकर इतिहास के पृष्ठ में अमर हो गए। मनुष्य के अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। वो दया और करुणा अपने परिवार तक ही सीमित न होकर अड़ोस पड़ोस, परिचित अपरिचित किसी के लिए भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा के लिए आपके पास प्रचुर धन राशि हो। आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके हृदय में मात्र करुणा के दो चार कण हैं तो वो भी बहुत बड़ा खजाना है। समस्याएं कहां नहीं बिछी हैं, संकटग्रस्त कौन नहीं है। सेवा और करुणा की जरूरत चारों ओर है। आपको जरूरत है उसकी चादर बिछाने की। रास्ते के हर मोड़ पर पीड़ित हैं, असहाय हैं। जरूरत है उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की, उनके दर्द को अपना दर्द समझने की। कुछ क्षण के लिए आप स्वयं पीड़ितों के जीवन की कल्पना कीजिए, उसकी देहरी पर खड़े होकर देखिए और सोचिए। आपके हृदय में स्वयं करुणा उमड़ पड़ेगी और उमड़ी हुई करुणा के दो चार छींटों से ही उन्हें नहलाइए। फिर देखिए उनके आशीर्वादों की फुहार, उसमें नहाकर आपको कैसी अलौकिक शांति मिलती है। छोटी छोटी सेवाओं को भी कभी छोटा मत समझिए। अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, रास्ता, नगर, कहीं भी आप ऐसी जरूरत देखिए, अपनी करुणा का दरवाजा तुरंत खोल दीजिए। हो सकता है आपकी करुणा भरी छोटी सी सेवा सहायता किसी को काल के गाल से निकाल दे, किसी माँ का लाल लौटा दे, किसी सुहागिन का लुटता हुआ सुहाग लौटा दे, किसी बच्चे को अनाथ होने से बचा दे, किसी वृद्ध या किसी परिवार को बेसहारा होने से बचा दे। हो सकता है इसके लिए बदले में आपको कोई कीमत ना मिले, पर आपका हृदय परमानंद से परिपूर्ण जरूर होगा। दया और करुणा रहित मानव मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, वो ईश्वर से बहुत दूर है। और ईश्वर के नजदीक वही है जिसने सोच लिया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सम्राट अकबर के दरबार में रहने वाले प्रधान सेनापति खानखाना रहीम, हाथ में एक पत्र है। पत्र में हैं सिर्फ दो पंक्तियां, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। पत्र लाने वाला है एक दीन दरिद्र ब्राह्मण। रहीम सोच में है। पत्र किसी ऐरे गैरे का नहीं, ये तो उनके परम श्रद्धेय मित्र संत तुलसी का है। उन्होंने तुलसी के अधूरे दोहे को पूरा किया। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। साथ ही ब्राह्मण की थैली उन्होंने पर्याप्त अशर्फियों से भर दी। उसे धन की जरूरत थी, बेटी की शादी करनी थी, वो निर्धन था। तुलसी के पहेली नुमा इशारे पर यहां रहीम ने ब्राह्मण को धन दिया। महत्व उसका नहीं है, महत्व है रहीम के भाव का, उनके उदात्त चरित्र का। क्योंकि तुलसी ब्राह्मण है, हिंदू है, और खानखाना रहीम मुसलमान, पर वे तो तुलसी के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी वे प्रभावित हैं। रहीम तो काशी उनकी कुटिया में भी आए।

0: स्नान के बाद सूंड से अपने ऊपर धूल डालते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मित्र रहीम से पूछा, धूरी धरत निज शीश पर, कहो रहीम के ही काज? और रहीम ने चट जवाब में कहा, जेहिरज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। बात तुलसी और रहीम की नहीं, बात इन कविताओं और कवित्व प्रतिभा की भी नहीं, बात है कट्टर जात पात के उस जमाने में भी हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की। कहां है वहां सांप्रदायिकता का द्वेष या भेदभाव? कोई भी संत या सूफी जाति पाति के प्रपंच से बहुत ऊपर होता है, वह तो मानवता का उपासक होता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, त्याग, परोपकार, अहिंसा और दया। उसका कोई दुश्मन नहीं होता। कबीर, नानक, रैदास आदि संत फकीर हिंदू मुस्लिम धर्मकांडों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने बहुत पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया था, सांप्रदायिक भावना से एकता का खंडन होता है, वह राष्ट्र की जड़ को खोखला करता है, हिंसा और रक्तपात कराता है। उन्होंने एकता की डोर से उसे एक करने की कोशिश की। तभी तो कहा, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो दाल हैं, को ज्यादा को कम। उन्होंने बार बार समझाया, राम रहीम एक हैं, उन्हें दो मत जानो। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने पर, स्वयं को सुधारने पर ही उन्होंने हमेशा जोर दिया, संपूर्ण मानव जाति एक ही परमात्मा की संतान है। जात पात के भेदभाव से परे होकर जो मानवता को मानव धर्म मानता है, जो भिन्न और विरोधी मतों को एक एकता की सुदृढ़ डोर से बांधने का प्रयास करता है, वही संत है, वही मानव है और वही ईश्वर या अल्लाह के निकट है।
1: बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ये था आज का चिंतन। और अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हरिओम शरण की आवाज को आपने सुना इस भजन में। चल रहा है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला भजन।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस कान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 406 406।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए। बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंड के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब कार्यक्रम विवरण के तहत आपको जानकारी देते चले आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग, इसे आप सुनेंगे सुबह 7 बजे और 7:20 पर कार्यक्रम काव्यधारा। गीत संगीत गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत सुनेंगे आप सुबह 7:30 पर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्र

से और प्रादेशिक समाचार सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे रांची केंद्र से। सुबह 8:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा मॉर्निंग मेलोडी, 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से, 10 बजे दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग और 11 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम, 1:10 पर दोपहर प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से आप सुनेंगे और 1:20 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे, दोपहर 2:55 पर प्रादेशिक समाचार और 3 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 4 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार रांची केंद्र से और 4:02 से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे और 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की कड़ी आप सुनेंगे और 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार रांची केंद्र से। शाम 5:02 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी, शाम 5:30 पर कार्यक्रम खेती बारी,

0: शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 पर महिलाओं का कार्यक्रम अंगना आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम, शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से और 7:10 पर जिले में आजकल रांची केंद्र से आप सुनेंगे। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। और शाम 7:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। 7:45 पर सदाबहार फिल्म संगीत का प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स। रात 8 बजे आपकी चाहत फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम। 8:10 पर विशेष श्रृंखला का कार्यक्रम होगा वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से और 9 बजे न्यूज एट 9। 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात 9:30 विविध भारती के कार्यक्रम। 10 बजे रजनीगंधा और 10:30 पर कार्यक्रम एक फिल्म से। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और हर रोज की तरह सभा समाप्त होगी रात 11:10 पर। यदि जानकारी कार्यक्रम विवरण के तहत आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शीर्ष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:54 कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-101 नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयल तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर।
2: It's 7 o'clock।
0: लीजिए अब सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

चल रहा है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

यह कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में

0: और अब समय है कार्यक्रम काव्य धारा का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत कुमार की कविताएं।
1: जोहार झारखंड, जोहार हजारीबाग। मैं अभिजीत कुमार गुप्ता सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। बहुतों ने कुछ खोया है, किसी की नौकरी चली गई तो किसी ने कुछ खास लोगों को खोया है। बहुतों ने इस कोरोना काल का डटकर सामना भी किया, जैसे कि हमारे देश के जवान, डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी और हमारी देश की जनता। सबसे पहले कोरोना वायरस के कहर पर कुछ पंक्तियां पेश करता हूं कि ये छोटे से प्राणी ने कैसा कहर बरसाया है, लोगों के चेहरे पर से नकाब हटाया है। जिसकी मेहनत की फसल खाया करते हैं, जिसकी मेहनत की फसल खाया करते हैं, उस किसान, उस मजदूर पर ये आज कैसा संकट आया है। कुछ लोग घर पर बैठे देश को बचा रहे हैं, कुछ लोग घर पर बैठे देश को बचा रहे हैं, कुछ लोग देश के वीरों पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये छोटे से प्राणी ने कैसा कहर बरसाया है, लोगों के चेहरे पर से नकाब हटाया है। जिनके चेहरों में नकाब नहीं था, यानी कि जो मेहनत कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बेचैन और बेताब हुए जा रहे थे। तो इनमें कुछ अल्फाज पेश करता हूं। ये बेचैनी ने सांस रोक सी रखी है, बेताबी से जिंदगी थम सी गई है। आलम ऐसा है कि आखिर करना क्या है पता नहीं, जीना है जिंदगी पर हालात अच्छे नहीं। हां यकीन है ये बेचैनी और बेताबी मेरे मुकाम पर जरूर पहुंचाएगी। हां ये मेरी कमजोरी कल मेरी ताकत बन जाएगी। हां ये मेरी कमजोरी कल मेरी ताकत बन जाएगी। और जब आपके पास मेहनत रूपी ताकत आ जाती है, तब आप जिंदगी की परीक्षा के लिए तैयार होने लगते हैं। कुछ अल्फाज जिंदगी की परीक्षा में पेश करता हूं कि जिंदगी की दौड़ में तू रुक मत जा, जिंदगी की दौड़ में तू रुक मत जा, उठा कदम और चलता जा। कौन कह रहा तुझे कि तू जीत ही जा, पहले खुद को तू इस जीत के काबिल बना। परीक्षा है जीवन की, इससे दूर क्यों है भाग रहा, खुद की पहचान बनाने से दूर क्यों है भाग रहा। आज नहीं तो कल मिट जाएंगे सारे फासले, बस तू मेहनत की सीढ़ी बुनता जा। परीक्षा खुद की खुद से है, तू जीत हार क्यों है ताक रहा, लड़ाई खुद की खुद से है, तू मेहनत रूपी तलवार से क्यों है भाग रहा। कुछ सोच मत, बस तू चलता जा। तकदीर में जो लिखा होगा यकी रख, उतना तो जरूर होगा। जिंदगी की दौड़ में तू रुक मत जा, उठा कदम और चलता जा, उठा कदम और चलता जा। कदम उठाने के लिए जिंदगी में हौसला बहुत ही जरूरी है। इस हौसले को खुद में जगाने के लिए कुछ अल्फाज पेश करता हूं कि ठोकरों के सागर से तू डर मत जा, ठोकरों के सागर से तू डर मत जा, खुद को तू चट्टान बना। गुरूर मत कर, गुरूर मत कर कि तू चट्टान है बन गया, टूटेगा फिर भी तू, बस आदत सी हो जाएगी, ये मतलब की दुनिया भी अपनी बन जाएगी। लोग यहां कुछ अपने कुछ है पराए से, ये लड़ाई है खुद की पहचान बनाने से। कहीं तू सहमा सा क्यों है बैठा, खुद से हार मान क्यों है बैठा, कुछ कर, बस बैठा क्यों है सोच रहा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा जो तू खोज रहा। बस रुक मत तू, कहीं भी झुक मत, ये बस समय का खेल है, इससे जीत कहां तू जाएगा, आज है तू इंसान कल मिट्टी बन जाएगा। समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसने है पाया, समय से बेहतर कौन है चल पाया। कर वही जो तूने सोच रखा है, जरूर होगा जो उस खुदा ने सोच रखा है, जरूर होगा जो उस खुदा ने सोच रखा है। तो खुद में भरोसा रखे, ईश्वर अल्लाह आपके साथ है। इस जीवन में मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। आज की युवा कुछ करने से पहले खुद में उलझ जाती है, पर सभी अपना भाग्य लेके आते हैं। तो भाग्य पे लिखी कविता पेश करता हूं कि जिंदगी के हर मुकाम में कुछ अलग होता गया, जिंदगी के हर मुकाम में कुछ अलग होता गया, सोचा कुछ और कुछ होता गया। बैठे बैठे होगा ना कुछ जो सोचा है तुमने, हकीकत वही है जो आईने में देखा है तुमने। हो वही तुम, बस तरीके बदल बैठे हैं, जिंदगी की भाग दौड़ में खुद को बदल बैठे हैं। भाग्य का लिखा जरूर सामने आएगा, ये जिंदगी है, यहां वही मिल पाएगा जो दिमाग की नहीं दिल की सुन पाएगा, जो दिमाग की नहीं दिल की सुन पाएगा। तो हमेशा दिल की सुने, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, इसे आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। बुरे समय में कोई और आपकी कुछ समय तक मदद कर सकता है, पर वो इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा रहकर आपकी मदद करे ये जरूरी नहीं। तो बुरे वक्त में दो पंक्तियां आप सभी को सुनाता हूं कि पीछे मत देख, तकदीर ने कहा धीरे से, पीछे मत देख, तकदीर ने कहा धीरे से, सपनों ने कहा बुरा वक्त है चला जाएगा, बुरा वक्त है चला जाएगा। बुरा वक्त तूफान की तरह आता है, और जो भी हमने पूरी शिद्दत और मेहनत से पाया है उसे उड़ा कर ले जाता है और आपको कुछ समय के लिए खामोश कर देता है। तो खामोशी में मैं कहता हूं कि खामोशी को कमजोरी मत समझ लेना, बस कुछ देखा है ऐसा जिंदगी में, ख्याल उसी पे मशरूफ हो जाते हैं। श्रोताओं, मैं यहां बताना चाहूंगा कि मशरूफ का मतलब है खुलना मिलना। कुछ लोग संभल जाते हैं और कुछ लोग को इस बुरे वक्त के दौरान बुरे नशे की आदत लग जाती है। कुछ लोग नशा शौक से करते हैं तो किसी को नशा मजबूर कर देता है करने को। तो नशे को आइए थोड़ा और समझते हैं मेरे लिखी कुछ पंक्तियों से कि सामने थी, पास थी, नजदीक थी, बस पता ना था। सामने थी, पास थी, नजदीक थी, बस पता ना था। थे गम तो दुनिया भर के, पर दवा ना था। कभी उसने बुलाया नहीं, कभी हम गए नहीं। जिंदगी भर की खुशी थी उसमें, पता ना था। कब पास आ गए उसके इतने, खबर ना रही। दूर जाने का सोचा तो और पास आती गई। जिसे अमृत सोच हम पीते रहे, पता ना चला वो हमें ही पीने लगी, पता ना चला वो हमें ही पीने लगी। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, बस हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी खुद को भी समझने के लिए समय देना चाहिए, जिसके लिए मैं कुछ पंक्तियां पेश करता हूं कि बैठा खुद के साथ कुछ सोच बैठा कि क्यों ये साथ की तलाश में लगे हैं लोग। जरा सा समय खुद को देकर

0: देखा तो होता खुद से बातें करके, देखा तो होता। गलतियों की गिनती है बहुत मानता हूं, गलतियों की गिनती है बहुत मानता हूं, कुछ सही करने का सोचा तो होता। हार मानना है आसान, जीतना है मुश्किल। हार मानना है आसान, जीतना है मुश्किल। ये क्यों सोच कर है तू बैठा मंजिल की तलाश में, खुद को खो क्यों बैठा। मंजिल की तलाश में खुद को खो क्यों बैठा। मंजिल वही है, आपका इंतजार कर रही है, जिसे पाने के लिए परिश्रम और तपस्या की जरूरत होती है। बिना इसके आपको आपकी मंजिल मिल नहीं पाती। बाकी तो सब तकदीर का खेल है। तो चलिए आपको इस कार्यक्रम की अंतिम कविता तकदीर पे सुनाता हूं कि तू रुक मत, तू झुक मत, तू रुक मत, तू झुक मत, दुख से क्यों तू घबराता। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, तू खुद में क्यों उलझ है जाता। मेहनत कर, मेहनत कर, फल की चिंता ना कर, तू क्यों है डर जाता। उस खुदा की लिखी किताब से तू है चल रहा, उस खुदा की लिखी किताब से तू है चल रहा। विश्वास रख बस उस पर जिसने तेरी तकदीर लिख, जिसने तेरी तकदीर लिख, कलम तोड़ रखी है, कलम तोड़ रखी है। आशा करता हूं कि आप सभी श्रोतागणों को मेरे ये
1: ये था कार्यक्रम काव्यधारा और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभिजीत कुमार की कविताएं। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अगला कार्यक्रम है गीत संगीत बस थोड़ी देर में।

0: पेश है कार्यक्रम गीत संगीत।
1: सूरज से भी कह दो कि अपनी

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत, और ये गीत आपने सुना हिमेश रेशमिया की आवाज में, और अब सुनवा रहे हैं आपको प्रोग्राम का ये अगला गाना, आवाज है सोनू निगम की।

यह था कार्यक्रम गीत संगीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और सुबह 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से और सुबह 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
3: We'll try to find common ground

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि

0: टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signed historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. in a significant development.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के सीआरपीएफ जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए जांबाज सद्दाम हुसैन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर कार्यक्रम के लिए एईआरओ के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। रांची के सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय मैपिंग शिविर। राज्य के 8 नए जिलों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। यूआईडीएआई के नागरिकों ने नागरिकों से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क करने को कहा। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो और जमशेदपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट सीरीज के लिए

0: झारखंड के चार प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन, निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोकारो के सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में दो आतंकवादियों को मात्र 25 मीटर की दूरी से सटीक प्रहार कर उन्होंने ढेर कर दिया था। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने से सद्दाम हुसैन खासा उत्साहित है।
1: सीओ साहब से सूचना मिली कि फॉरेन कुछ टेररिस्ट हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली हम अपने टीम के साथ वहां गए, ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। आतंकवादी जो था वो फॉरेन टेररिस्ट था, वो हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के इराक से अंदर घुसे थे। दो दिन की लड़ाई चली और उसको मार गिराया गया।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी AERO के रिक्त 147 पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्देश दिया है। रांची में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 13 और 14 जून को विशेष मैपिंग शिविर लगेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर यह शिविर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को शिविरों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। राज्य में आधार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8 नए आधार सेवा केंद्र जल्द शुरू होंगे। ये केंद्र हजारीबाग, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में खुलेंगे। UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों का उपयोग करने की अपील की है। किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क किया जा सकता है। धनबाद गया रेलखंड पर रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस रूट पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी कवच तकनीक से लैस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। रेलवे द्वारा किया गया यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। धनबाद रेल मंडल DRM अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस तकनीक के लागू होने से एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के आने की स्थिति में ब्रेक अपने आप लग जाएंगे।
2: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें अब हम लोग चला रहे हैं बहुत ही रफ्तार बढ़ती जा रही है, ट्रेनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो कम होती जा रही है। किसी भी तरह से अगर मानवीय चूक होती है तो ह्यूमन एरर को गार्ड करने के लिए कवच की प्रणाली है और ये एक अच्छी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है की भारतवर्ष में डेवलप हुई है। RTSO और टीम ने इसका डिजाइन बनाया है।
0: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने चाईबासा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में खाद्यान्न के उठाव, परिवहन और भंडारण की स्थिति का जायजा लिया। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने वाले साइबर अपराधियों के बढ़ते खतरे पर कड़ी चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए के खनिज बकाए के त्वरित भुगतान की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची मेट्रो ट्रेन, पारा शिक्षकों के मानदेय और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का मुद्दा भी उठाया। इस पर झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के हक की आवाज बुलंद की है, केंद्र बकाया तुरंत जारी करे।
4: तो नीति आयोग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे राज्य के जो बकाया है वो बकाया दे दिया जाए, क्योंकि राज्य की जो राजकोषीय जो जरूरतें हैं उसको पूरी करनी है। तो एक मेट्रो रेल यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए होना चाहिए।
0: पलटवार में भाजपा प्रवक्ता अजय साहा ने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक छोड़ केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और आंतरिक सुरक्षा सुधारने पर ध्यान दे।
5: आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि बोकारो में, चाईबासा में, लातेहार में, झारखंड के अन्य जिलों में जो डीएमएफटी स्कैम हुआ है उसकी जांच कहां तक पहुंची है? 1,36,000 करोड़ के मामले में वापस से आपने झारखंड की जनता को क्यों गुमराह किया? लैंड एक्विजिशन को आप क्यों सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा वापस से रिम्स टू को या जगह जगह दोहराने की है?
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड के कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषकर रांची, बोकारो और जमशेदपुर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हरियाणा के यमुनानगर में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाली T20 केसरी दिव्यांग क्रिकेट राष्ट्रीय सीरीज में झारखंड के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंडिया ए टीम में निशांत कुमार उपाध्याय, नीरज कुमार और शौकत अली को जगह मिली है, जबकि वागीश त्रिपाठी इंडिया बी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सभी खिलाड़ी रांची से रवाना हो चुके हैं। जेएससीए स्टेडियम में खेली जा रही झारखंड T20 लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले में छोटा नागपुर रॉयल्स का सामना कोयलांचल सुपर किंग्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में धनबाद डायमंड्स और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीमें आमने सामने होंगी। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उठाए गए मुद्दों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड को सिर्फ खनिज राज्य ही नहीं नॉलेज हब बनाना है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेट प्रावधान में होगा बदलाव, 25,000 शिक्षकों को राहत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सर्वोच्च अदालत ने गृहणियों के कार्य की कीमत आंकी। दैनिक जागरण लिखता है, सीएम 29 जून को सहायक आचार्यों को देंगे नियुक्ति पत्र। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के सीआरपीएफ जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए जांबाज सद्दाम हुसैन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर कार्यक्रम के लिए एईआरओ के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। रांची के सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय मैपिंग शिविर। राज्य के 8 नए जिलों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। यूआईडीएआई ने नागरिकों से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क करने को कहा। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो और जमशेदपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन, निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे, सवाल पूछे। डे थ्री
2: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म से ये गाना आपने सुना सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम है मॉर्निंग मेलोडी और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

डेट्स इस फिल्म से गाना आपने सुना, अरिजीत सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य और चिन्मयी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं आपको अलका याग्निक की आवाज में प्रोग्राम का ये आखिरी गाना, फिल्म है आ अब लौट चली।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और अब अगला प्रसारण मुंबई केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
1: विशाल मिश्रा की आवाज में ये एनिमल फिल्म का गाना है।

और अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गाना। फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा।

जब शोर भरी दुनिया भी विविध भारती हो आपके संग, तो घुलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं रंग तरंग, गैर फिल्मी गजलें,

0: रोज दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

भारती से चित्रलोक, अलका याग्निक और शान की आवाजें। फिल्म का नाम बस इतना सा ख्वाब है,

आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपको नए फिल्मी गीत सुनाते हैं। अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: यह है विविध भारती
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।
1: एक

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहने लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे
0: नाम
1: वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

तो 9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

0: सरदम।
1: सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

अभिनेत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बिमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल

0: साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदि बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा
0: कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी।
2: दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थी, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:02। लीजिए अब सुनिए दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
1: हर नई सुबह लेकर आती है नई उम्मीदें, नए विचार और नई संभावनाएं। इन्हीं सकारात्मक संदेशों के साथ आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में। मैं हूं अनामिका और अगले कुछ मिनटों तक हम बातें करेंगे, तो मुस्कुराइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो रहा है आपका अपना प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।

दोस्तों, सफलता का रहस्य लक्ष्य पर निरंतर ध्यान बनाए रखने में है। और आज का खास सुविचार दोस्तों, बच्चे देश का भविष्य है, उनके हाथों में किताबें अच्छी लगती है, मजदूरों के औजार नहीं।

और दोस्तों अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज के दिन के इतिहास को जान लेते हैं। न्यू एम्स्टर्डम कानूनी तौर पर 1665 में ब्रिटेन का हिस्सा बना और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया। पोप अलेक्जेंडर की जगह 1691 में इनोसेंट 12वें पोप बने। अमेरिका में 1787 को सीनेटर के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा कानून पारित हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1812 में रूस पर हमला किया

दक्षिण अफ्रीका में 1964 को रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा हुई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया। ब्रिटिश चुनावों ने 1987 को मार्गरेट थैचर को की तीसरी बार ऐतिहासिक विजय हुई। दुनिया की सबसे बड़ी ट्विन जेट विमान बोइंग 777 ने 1994 में पहली उड़ान भरी। भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय लिया गया था 1998 में। सीमा मुद्दे पर 2001 में भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुई थी आज ही के दिन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन साल 2002 में।

कनाडा में होने वाले जीव विज्ञान ओलंपियाड में 2007 को 4 भारतीयों का चयन हुआ था और ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में 12 जून 2007 को सिख छात्रों को धार्मिक प्रतीक कृपाण रखने की इजाजत मिली थी। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ वर्ष 2009 हेतु छठी सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी 2008 में सौंपी गई थी। प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 2008 में 10वें ओसियाना सीन फैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया था और साहिना नेहवाल ने 2016 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था। और अब आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आपको बताते चले। जर्मनी प्रसिद्ध लेखिका एनी फ्रैंक का जन्म 1929 में हुआ था आज ही के दिन, जिसकी डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। मशहूर भारत नाट्यम नर्तकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म 1932 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। पाकिस्तान के मशहूर बल्लेबाज जावेद मियांदाद का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक श्यामा का जन्म 1935 में आज ही के दिन हुआ था।

और आज के दिन जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ था उनके बारे में भी आपको बताते चले। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री डी जी तेंदुलकर का निधन आज ही के दिन हुआ था 1972 में। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का निधन हुआ था आज ही के दिन 1976 में। मराठी लेखक पी एल देशपांडे का निधन 2000 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिकी अभिनेता ग्रेगरी पैक का निधन आज ही के दिन 2003 में हुआ था। पद्मश्री नेकचंद सैनी का निधन आज ही के दिन 2015 में हुआ था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का निधन 2017 में आज ही के दिन हुआ था। और आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस रूस के लिए।

और दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की, जो हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों बाल श्रम केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि बच्चों के बचपन, शिक्षा और स्वस्थ भविष्य पर होने वाला गंभीर प्रहार है। हर बच्चे को शिक्षा, खेल, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार है। जब बच्चे कम उम्र में मजदूरी करने को मजबूर होते हैं तो उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। विश्व बाल श्रम निषेध का उद्देश्य समाज को यह संदेश देना है कि बच्चों को श्रम से मुक्त कर शिक्षा और बेहतर अवसर प्रदान किए जाएं, साथ ही सरकार, संस्थाओं और आम नागरिकों को बाल श्रम उन्मूलन के लिए मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। दोस्तों इस दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और एक ऐसे समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है जहां हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। तो आइए इस अवसर पर हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि बाल श्रम को रोकने और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि बच्चों का बचपन सुरक्षित होगा तभी देश का भविष्य उज्ज्वल होगा।

चल रहा है प्रोग्राम हेलो हजारीबाग और दोस्तों अब बात करते हैं हजारीबाग की स्थानीय गतिविधियों की। जिले में 12 जून से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। विभिन्न विद्यालयों में प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। वहीं मौसम विभाग ने जिले में तेज हवा और वर्षा की संभावना

भावना व्यक्त की है। श्रोताओं से अपील है, मौसम संबंधी सावधानियों का पालन करें। हजारीबाग जिले में गुरुवार को दिन भर कड़ी धूप और तपिश रही, शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तापमान अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। आज भी बादल छाने, कोहरा और कुहासा होने की संभावना है, लेकिन तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

सेवा के दौरान ट्रेनिंग पाने वाले 25,000 शिक्षकों की बचेगी नौकरी। जेटेट के प्रावधान में होगा बदलाव, शिक्षा विभाग ने जैक को लिखा। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए हेमंत सोरेन, रखी झारखंड की मांग। सीएम ने 1.36 लाख करोड़ बकाया मांगा। खेल विश्वविद्यालय व 2 मेडिकल कॉलेज भी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाली गृहिणियों के मुआवजे के आकलन की कानूनी परिभाषा बदली। गृहिणियों को कहे राष्ट्र निर्माता, हर महीने 30,000 की हकदार। शेख भिखारी अस्पताल में लगेगी ब्लड सेपरेटर मशीन। रांची में 2 घंटे में 40 मिलीमीटर बारिश। राज्य में ठनके से 3 लोगों की मौत। झारखंड के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश। और 4 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमले। 3 भारतीय नाविकों की मौत। और फीफा विश्व कप में 7 कुल मैच हुए हैं अमेरिका और पराग्वे के बीच, जिसमें पराग्वे के विरुद्ध अमेरिका सिर्फ 1 मैच हारा है। अमेरिका ने इसमें से 4 मैच जीते हैं जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे। और महिला टी20 विश्व कप आज से इतिहास रचने को तैयार, भारत की बेटियां।

इसी के साथ दोस्तों आज के प्रोग्राम हेलो हजारीबाग से दीजिए अपनी दोस्त अनामिका को अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

रोशन की थी। आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली के स्वर में एक गीत। ये रचना है महादेवी वर्मा की लिखी हुई, जयदेव ने संगीत तैयार किया। फिल्म का नाम त्रिकोण का चौथा कोण।

0: पुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी, कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुप

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है।

0: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

तारे जमीन पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ليلى مجنون، شيرين فرهاد،

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में, संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

पत्ते तक बैगुन परा।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गईयों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से जरा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है, फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था। और फिर दिल शायर बन गया, गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ खास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है, यहाँ पर कहीं संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए। क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ कर रखा है कि देखें आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं। उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है, जरा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी आपने। सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी, या फिर कोई गाना, या फिर कोई अपनी जिंदगी की कोई घटना, जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी, और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं

0: हाँ, एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और न ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे, एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सीधे दिल से जुड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्म पत्नी है, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है। एक ने लिखा है किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो। एक श्रोता ने लिखा है कभी कभी दिल से दिल किसी का शुक्रिया अदा करना भी कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं रोजाना। एक श्रोता ने लिखा है मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। एक श्रोता ने लिखा है विविध भारती के नाम से कई सारी साइट है, नए लोगों को बहुत परेशान करती है। तो देखिए यहाँ पर जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा लिखा है और ब्लू टिक है विविध भारती की जो असली प्रोफाइल है, तो वहां जाके देख सकते हैं। और इस समय जहां से आपको ये सुनने को मिल रही है ये बात, जहां से टिप्पणियां मिल रही हैं, वहां पर आप आइए। और विविध भारती की लिंक भी है जो जिसे आप देखकर वहां पर पहुंच सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल है वो नकली प्रोफाइल है, याद रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहां यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएं जन्म लेती हैं। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, एक श्रोता ने लिखा है। वही वाह, गानों की तो लंबी फेहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफर इतना लंबा हो जाएगा कि कभी खत्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई, हमने आपसे कहानी पूछी थी, जरा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफर में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की। प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।
1: तुझे

0: जिससे हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया, हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो,
0: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
2: जामताड़ा जिले में किसानों, व्यवसायियों और समाज सेवियों सहित हर वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। प्रगतिशील किसान अभय कुमार सिंह सहित हर वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं।
3: किसानों के लिए उन्होंने जो काम किए बहुत ही सराहनीय है। हर एक किसान को साल में 6,000 तीन किस्त में देकर उन्नत कृषि करने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया और आज किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया में अपने समय पर बीज खाद खरीद कर खेतों में जो अपना काम कर रहे हैं, उन्नत बीज उन्नत खाद के माध्यम से कम जगह में अच्छे से अधिक फसल उपजाने का काम आज किसान कर रहे हैं, जिसमें किसान काफी खुशहाल हैं।
2: झारखंड उच्च न्यायालय ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस याचिका में करीब 1,000 कैदियों की रिहाई के लिए लिखित सुझाव दिए गए हैं। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों का बकाया राशन और कल्याणकारी सामग्रियां एकमुश्त देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने धोती, साड़ी, नमक और दाल योजना का बैकलॉग

0: यानी एनएसएस विंग ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत की है। चालू सत्र में इस विंग की रैंकिंग और प्रतिष्ठा में बड़ा सुधार हुआ है। लगभग 10,200 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ यह विंग झारखंड के सबसे सक्रिय छात्र संगठनों में से एक बनकर उभरा है। यह विंग राज्य में वृक्षारोपण, रक्तदान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने दुमका में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए आरोपों से साफ है कि महागठबंधन बिखर चुका है। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महज 16 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, जबकि 24 विधायकों वाली भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की सलाह दी।
1: इस तरह से कांग्रेस जो है उछल कूद कर रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि हमारे समर्थित प्रत्याशी नाथवाने जी पिछले बार के अधिक वोट जीत करके राज्यसभा में जाए। कांग्रेस का इस तरह से विधानसभा के अंदर छाती पीट रहा है। ये पता चलता है कि कांग्रेस टूट के कगार पर है, मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है।
0: देवघर पुलिस ने जसीडीह स्टेशन के पास से 6 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय ब्राउन शुगर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से 76 ग्राम मादक पदार्थ और नकद बरामद किए गए हैं। एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आरोपी रेल मार्ग से नशा लाकर देवघर में सप्लाई करते थे।
2: सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ पे रेड करने गई, तो उस टीम ने नजर रखा और फिर देखा कि 2 लोग ट्रेन से आए और वहाँ ब्राउन शुगर डिलीवर करने के लिए आए थे। उनके बदले 63,000 रुपए ये लोग नगद देने वाले थे और इनको ट्रांजेक्शन करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और 76.19 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद की हुई है।
0: घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक बढ़कर 23,382 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। भारत के दिग्गज पिस्टल निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने उनके निधन की पुष्टि की है। म्यूनिख विश्व कप से लौटने के बाद बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। वे भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि निशानेबाजी में असाधारण उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करने वाले राणा का जाना खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बेहद मिलनसार बताते हुए देश में निशानेबाजी को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को सराहा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता, स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज, धोती साड़ी, नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के

लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियां भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल आपके जवाब का रहता है हमें इंतजार और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद, हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि ये वाला व्यक्ति दिल से चला जाए लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai की टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है, एक लाइन

यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहां नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गम आज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, जरा ये भी तो अंदाजा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिक, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब जरा कुछ और टिप्पणियां भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविजन पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, पर अफसोस वो अब नहीं।

0: उफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल। जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना।
1: के चेहरे से हटा सकता नहीं।
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है।
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान

कन्यादान फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की बोलते शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है, हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा। जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल

0: बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन जरा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है सब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

0: गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है, और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों की बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियां याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहां हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है, और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ, और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है। लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियां प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती है कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को, और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।
1: संभालिए अदाएं आपकी के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा, जरा संभाल।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अशकों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतजार करना और कभी कभी टूट कर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

गीतकार एसएच बिहारी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है शर्मिला टैगोर, एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है, जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में जरूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह, अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है, बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती है और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, मुकेश की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो जरूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मजा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी

0: बारिसाल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठी चार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठी चार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दास गुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहू लुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम

0: पराक्रम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
1: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्रपाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा।
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठी चार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, आई विल बी सेफ हियर विद यू। Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जन समुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
1: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया। अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
1: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
4: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
2: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 32वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है। अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स

0: बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि

0: अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना और रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। एक रिपोर्ट।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर पंचायतों को आवंटित अनुदान राशि से योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के सुचारू और समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र जारी कराने की मांग की। आज भारत आदिवासी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में मुलाकात कर जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सारंडा क्षेत्र के पात्र निवासियों को वनाधिकार पट्टा प्रदान करने की दिशा में पहल करने का अनुरोध भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ACB के विशेष न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी की अदालत ने खूंटी अंचल के कर्मचारी सत्यनारायण राम को 500 रुपए रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया है। वर्ष 2006 के इस मामले में अदालत ने उन्हें 1 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जमशेदपुर में नशामुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। जिले के उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
3: राज्य में नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग चाहेंगे कि लोग नशा से अपने आप को मुक्त रखें। नशा परिवार के आर्थिक स्रोत को भी काफी क्षति पहुंचाता है और खास करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जिस घर में नशा होता है वहां पे प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि अपने परिवार को नशा से मुक्त रखें, जिससे हम अपने देश को विकास के रास्ते पे ले जाएं।
2: और अब मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मॉनसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस प्रतियोगिता का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ

0: खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। इस बार पहली बार 12 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से टकराई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आज जी मैं चांदनी जी बोल रही हूँ।
0: चांदनी जी
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात
1: जी।
0: है चांदनी जी,
1: जी
0: क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी, क्या बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी, मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा,
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: जी, मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक टैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। तो खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चावल आते थे ना पहले,
0: जी,
1: खाकी
0: जी,
1: कवर
0: जी,
1: उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है मैं ना भूलूंगी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
0: झांसी से धन्नो जायसवाल। धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: जी, तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और अब 2 लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
1: हम ही करते थे मैडम, सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी जाते लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए,
1: आप ही की बिन।
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी, जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ,
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ
0: जी, सुनाइए।
1: अपनी रचना सुनाती हूँ
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, खुद से हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी, बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से।
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा हाँ। चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैसेज हूँ, और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, काटी चौक में
0: जी।
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी,
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं, और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल। तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है, मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
1: बहुत बहुत बहुत हाँ।
0: जी तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है वो काम भी कर रहे थे यहाँ
0: जी,
1: पे।
0: जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों के कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था?

0: के घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल, और छुट्टों में भी कैसा करते तो पढ़ाई में ही ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे करते थे?
1: हाँ ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर हम उसको खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना?
1: बहुत बहुत मैम
0: जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। वैजयंती जी, आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं?
1: बहुत पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत। Thank you.

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है
1: जी,
0: ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है, घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी जी। ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे

0: आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में,
0: जी
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं?
1: बनाते ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते।
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के, जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल
1: अग्निपथ का,
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है। जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली
0: जी।
1: तो मैं वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी हाँ, आप अभी यहाँ पे आपका ट्रांसफर हुआ है, किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह,
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर नए शहर में है? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से

0: होता है, ऐसा सुना होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
0: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
1: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपने काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
1: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है।
0: अच्छा।
1: और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं या

0: यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी।
0: जी तो सुनीता जी, हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पत्नी है, दो बच्चे हैं
0: जी,
1: देवर के एक है, एक मेरा है। हाँ।
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं, छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी,
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ।
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुना था, मेरे घर आई है नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से मैडम।
0: जी ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा ताराना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।

0: साथियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग वापस करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।
2: तुलसी ने कहा कि एनटीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा

0: में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। गोड्डा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार महली ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चपरासी टोला में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान राहुल कुमार शाह और विपिन सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए बैटरी संचालित कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने प्रथम चरण में 6 ट्रैफिक जवानों को विशेष जैकेट प्रदान किए। SP ने बताया कि एक बार चार्ज होने पर यह जैकेट करीब 6 घंटे तक ठंडक प्रदान करती है और आगे सभी ट्रैफिक जवानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मॉनसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी

नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है।
1: मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो।
0: वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं।
1: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
0: तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा ऑफिस से आकर

आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूमकर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लो। प्रेम ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिका कर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत। तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोचकर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्म आ जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

0: रे।
1: अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहाँ अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देख कर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे।
0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।

0: की
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: खुशियाँ अपनाएं खुशियाँ, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अवैध खनन के खिलाफ देर रात छापेमारी कर 3 ट्रेलर और 1 पोकलेन मशीन जब्त कराई। छतरपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में की गई इस कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय खनन गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। मंत्री ने कहा कि अवैध खनन से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र के दलांचल करई गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक भूमि विवाद और जादू टोना को लेकर चल रहा विवाद मुख्य कारण पाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि सभी आरोपी मृतक के गोतिया पक्ष के हैं और हत्या की साजिश में शामिल थे। पलामू जिले में सोशल मीडिया पर देशी कट्टा के साथ स्टेटस लगाना एक युवक को महंगा पड़ गया। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सरसोत गांव निवासी 19 वर्षीय अभय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर 2 देशी हथियार बरामद किए हैं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरायकेला खरसावां जिले में पहली बार महिला खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने बताया कि 25वीं जिला फुटबॉल लीग 2026 का आयोजन 24 जून से 1 जुलाई तक खरसावां के अर्जुना स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो भी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म का ये नगमा, आवाजें थी सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं अनवर के आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

तो अभी आप सुन रहे थे अनवर और सुलोचना पंडित की आवाज में गाए इस गीत को, और प्रोग्राम का आखिरी नगमा हम आपको सुना रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार की।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी यहीं पे समाप्त होता है। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी, बस कुछ ही देर में।

कार्यक्रम खेती बारी सुने वालन सभी भाई बहन के मुकेश सने से जोहार प्रणाम और राम राम। साथ साथ सभी भाई बहन के अपनी खास कार्यक्रम खेती बारी में स्वागत हन जोहार हन। और देखा कि बड़े दिन के बाद हम इन भेंट हो लीजिए तो आशा करेंगे कि सभी भाई बहन बढ़िया होते अपने खेती बारी के काम कर ले होते। और देखा सबके खेत में देखा समय भी हो गए है, आए वाला जे समय ला 20-25 तारीख से लगभग देखा कि मानसून हम इनके तरफ आ ही जेते और खेत के भी तैयारी सब किसान भाई कर ले होते। और अभी देखा सब्जी भी बहुत किसान भाई बहन के खेत से निकल रहे होते, जैसे कि भिंडी होले करेली होले ये सब चीज अभी निकल रहे होते। तो भाई शुरुआत में हम इन बात करबे आ रहा एक चर्चा यहाँ बात यहाँ कर लिए कि बाल श्रम के बारे में। और बाल श्रम में महिला मंडल या महिला समूह की क्या भूमिका है, किस तरह काम कर रहा है, एक बात एक बात करबे। तो सबसे पहले बात करबे बाल श्रम के बारे में। तो भारत में 14 साल से जो कम उम्र के बच्चा है ओकरा कोई भी मजदूरी में लगाना देखा एक दंडनीय अपराध।

0: भी है। साथ ही साथ 14 से 18 साल के जो किशोर है ओकरा कोई भी जोखिम भरा काम में, जैसे कि कारखाना होले, जैसे कि पटाखे कारखाना होले और किसी तरह के जोखिम भरा कारखाना होले, ओकर में लगाना भी एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई इस तरह के काम करते हुए पकड़ा जाए जो करवार ले, तो ओकरा 6 महीना से लेकर के 2 साल तक सजा हो सका है। साथ ही साथ 20,000 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया तक के जुर्माना हो सका है या दोनों हो सका है। ये देखा कि बाल श्रम निषेध कानून 1986 के तहत है। एक बात रहले कि बाल श्रम हुआ का है, तो बाल श्रम के जो हमें हुआ का है एकर कारण हम इन बात करबे, एकर कारण है सबसे बड़ा गरीबी है। बहुत सा जो है माँ बाप भी जो कर है कि गरीबी के कारण अपन बच्चा लोग के भेज देवे है, तो ये भी कारण हो सके है। से अशिक्षा भी होवे है, पढ़ल लिखल माँ बाप नहीं रहा है और बच्चा भी पढ़ल लिखल नहीं रहा है, जेकर कारण भी होवे है। जागरूकता के कमी भी एकर में बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सा लोग ये नहीं जाना है कि सरकार की बहुत सारा योजना है जेकर लाभ ले करके जे अपन बाल बच्चा लोग के जो है जे कम उम्र के बच्चा है, 14 साल से या 18 साल से कम उम्र के जो बच्चा है ओकरा एक अच्छा हमीन के मुकाम दे सके है। शिक्षा देखा है में फ्री है पूरा तरह से, छात्रवृत्ति के प्रावधान है सरकार के तरफ से, सर बहुत सा एकर में है योजना भी है, कल्याणकारी योजना भी है, साइकिल भी मुफ्त का देखा योजना है, अब देखा मिड डे मील भी है। तो ये सब चीज जो है बाल श्रम के बहुत हद तक रोका है और सरकार के बहुत बड़ा एकर में पहल भी है कि किस तरह बाल श्रम नए हो। और देखा है महिला मंडल के हम इन जहां तक बात करबे कि बाल श्रम रोके में महिला मंडल या महिला समूह के बहुत बड़ा भूमिका है और बहुत बड़ा एकर में योगदान भी है। क्या कि देखा महिला मंडल या महिला समूह बोले छोटा छोटा बचत करके देखा आत्मनिर्भर बना है, और जब घर के एक महिला जब आत्मनिर्भर बना है तो अपन बाल बच्चा के अपन घर परिवार के एक अच्छा दिशा के ओर ओकर में ले जा है। साथ ही साथ देखा महिला मंडल जो है समाज में है शिक्षा के बढ़ावा भी देवे है। एक तरह के समाज में आसपास में जब महिला मंडल के सदस्य लोग जब घूमा है तो अगर कोई भी इस तरह के अगर काम कहीं देखा है तो ओकरा रोकथाम भी करा है, बतावा है शिक्षा के का महत्व है और सरकार के तरफ से बहुत तरह के जो योजना चल रही है ओकर बारे में भी बतावा है, जेकर से बाल श्रम रुका भी है। साथ ही साथ एक बात एकर में है सामुदायिक निगरानी, अगर कहीं किसी तरह के अपराध हो रहे तो महिला मंडल समूह जो है अपन विवेक से अपन सदस्य के माध्यम से भी बहुत हद तक एकरा रोकथाम करे में सफल रहले है। और सरकार भी पूरा तरफ से है पूरा जोर शोर से जागरूकता अभियान चला करके भी बाल श्रम के पूरा रोके के भी काम करा है। तो भाई कार्यक्रम में हम इन बने लिए और समय हो चुके हैं जरूरी संदेश के और कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुके हैं, तो कहें जरूरी संदेश के बाद हमें सुनाइए एक प्यारा सा गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो देखा हमें सुन लिए प्यारा सा गीत, और प्यारा सा गीत के पहले हमें सुना लिए एक जरूरी संदेश, और देखा बढ़िया जानकारी की तरफ। और आज हमें बात कर रहे सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में कि क्या है और किस तरह से हमें किसान जो है कार्ड से जुड़ सका ही है। तो देखा सॉयल हेल्थ कार्ड है एक तरह के माटी के का सेहत है, एक बारे में जानकारी के कार्ड है। और जे भी किसान भाई बहन खेती बाड़ी जो करे है और सबसे पहले कोई भी फसल लगावे है तो कर पहले माटी के जांच जरूर करा के चाहिए, क्योंकि हमें जाने ही कि माटी में बहुत तरह के पोषक तत्व हुए है। और मान ला कोई भी फसल हमें लगा ली और पोषक तत्व के कमी रहे तो पूरा मेहनत हमें के बेकार हो जाए। तो इसी एकरे खातिर जो है कि सॉयल हेल्थ कार्ड के हमें उपयोग करिए, हमें एक से जानकारी लीजिए। तो एक बनावे के जो तरीका है, सबसे पहले तो बात है कि जे भी नजदीक कार्यालय है, कृषि कार्यालय, वहां पे जाए के चाहिए और अपन माटी जो खेत के माटी है सही नमूना लेवे के चाहिए। और सही नमूना लेवे के विधि भी है, सही नमूना लेवे के है ऐसा विधि है कि वो नमूना जो खेत के देखा सही प्रतिनिधित्व करे, सही नमूना वो हो तो खेत के चारों कोना और बीच से माटी लेवे के चाहिए। भी आकार के कम से कम 6-7 इंची गड्ढा करके हम इनके माटी लेवे ही होकर से, तो कि एक सही नमूना हम इनके हुआ है। जब भी हम इन खेत के जो माटी का नमूना लिए, एक बात ध्यान एक में रखिए कि छाया वाला जगह से नहीं लिए वो नमूना, और कहीं अगर मान लो गोबर रख ले है और नीचे के नमूना हम ना लिए, कहीं पत्ता हम जमा कर लेगी वहां से हम ना लिए, जहां अलग जहां साफ सुथरा जगह है वहां से हम नमूना लिए, ताकि एक सही नमूना जब माटी के जांच के लिए जाए तो हम इनके सही जानकारी वहां से मिले कि हम इनके माटी अम्लीय है कि क्षारीय है कि किस तरह के है, कौन चूना डाले के है कि बोरान डाले के है कि पोटेशियम डाले के है। तो इस चीज के जानकारी हम इनके मिले, एकर खातिर माटी के जो नमूना है उस सही तरीका से लेवे के चाहिए। माटी के हम इन ले लिए नमूना, ओकर बाद ओकर में एक चीज भी ध्यान देवे के चाहिए, अपन खेत के का है, किसान अपन नाम लिखा, अपन खेत के नाम लिखा, खाता प्लॉट जो होले, और माटी जांच कराए के पहले का ची ओकर में लगैला हल ओकर जानकारी देवे के चाहिए कि हाँ हमें ई खेत में लगैला लिया, और माटी जांच कराए के बाद हम इन का लगेबे ई भी जानकारी देवे के चाहिए, क्योंकि वही

0: ही के अनुसार जो विशेषज्ञ है वो जांच करके बताते हैं कि माटी में किस तरह के चीज माटी है और कौन सा पोषक तत्व की कमी है। तो एक दो शब्द हम इन माटी दे दे ही है, तो एक दो सप्ताह के बाद जो हम इनके माटी जब मिला है तो ओकर में हम इनके जानकारी मिल जाए कि कौन सा पोषक तत्व के एकर में कमी है और पोषक तत्व के कमी के दूर करके हम इन माटी के सेहत बना लीजिए। और ओकर बाद जब हम इन कोई भी खेती बाड़ी करबे तो हम इनके खेती बाड़ी बढ़िया होते, उत्पादन बढ़िया होते और सब कुछ बढ़िया होते। एक बात रहले कि अपन नजदीक के कार्यालय या बहुत से देखा गांव घरे में देखा कृषक मित्र भी है, हम इनके है किसान मित्र भी है, तो जे हम इनके गाँव घर के रहे हथिन तो उनकर माध्यम से भी हम इन जानकारी ले सकिए, उनकर भी हम इन दे सकिए माटी के जाँच कराए कर खातिर और जे कि नजदीकी कार्यालय में एकर में होते। तो ई रहले सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, हमारी बहुत जरूरी कार्ड है, सब किसान भाई बहन के एकर से जुड़ना चाहिए और सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से माटी के जांच कराए के चाहिए। और देखा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों देखा सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में पूरा जोर देवे है कि जो है किसान जो है अपन माटी के सेहत के जाने और ओकर हिसाब से अपन काम करे, वो अगर कहीं कुछ कमी बेसी है तो ओकरा दूर करके अपन खेती बाड़ी आगे करे। और देखा अब हम इन आगे बढ़िए जे हम इन आज किसान से एक बातचीत कर लिए कि खेती बाड़ी में गोबर खाद के महत्व का है और जानकारी दे रहे थीन केदार यादव, इनकर से बातचीत कर ले मुकेश कुमार, तो सुनल जाए ये जानकारी।
1: श्रोताओं, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक अनुभवी किसान केदार यादव से। तो केदार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जोहार है।
2: आपको भी धन्यवाद मुकेश जी।
1: जी केदार जी, अभी आपके खेत में क्या लगा हुआ है?
2: अभी हमारे खेत में भिंडी बोदी लगा हुआ है, इसके पहले खीरा लगा हुआ था।
1: जी, तो हम भिंडी और बोदी का बात करते हैं। भिंडी कितना कट्ठा लगा है?
2: भिंडी 5 कट्ठा में।
1: जी, और बोदी?
2: बोदी भी 5 कट्ठा में,
1: यानी 5-5 कट्ठा लगाए हैं। तो हम बात यहाँ करते हैं भिंडी का, भिंडी का और बोदी का खेत का जो तैयारी है वो आप किस तरह की है?
2: सबसे पहले है भिंडी और बोदी या किसी भी फसल में खेत की जो तैयारी की जाती है
1: जी,
2: तो खेतों को बहुत अच्छी तरह से जुताई की जाती है।
1: जी,
2: जुताई में कहने का अर्थ है कि हम लोग हल बैल से करते हैं, तो हल बैल से करने में कम खेत की जुताई 5 बार किया जाता है।
1: जी,
2: 5 बार करने से मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है और कुछ समय जुताई का क्रम जो है सो कुछ समय रुक रुक के होता है, करते हैं। जैसे आज किए, फिर 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, इस तरह से 15 दिनों के अंतराल में हम लोग खेत की तैयारी करते हैं। इससे अभी के समय में लाभ यह होता है कि जो खरपतवार घास आदि जो उगते हैं
1: जी,
2: वो उगते हैं और जुताई कर देते हैं, उगने के मूड में आते हैं तो जुताई कर देते हैं, तो जो फसल में जो खरपतवार उसे हम लोगों को कम सामना करना पड़ता है।
1: जी हाँ, तो ये तो आप बात की हल बैल का, अगर ट्रैक्टर से लोग जुताई करें तो उसमें कितना बार करना पड़ता है?
2: ट्रैक्टर से जुताई करने में, रोटोवेटर से जुताई करने में एक जुताई में हो जाएगी खेत की तैयारी,
1: एक जुताई में हो जाता है। हाँ, यानी अगर छोटा खेत रहा तो हम तो हल बैल ही लगाते हैं उसमें।
2: जी हाँ,
1: और बड़ा खेत में अपना ट्रैक्टर लगा दिया।
2: ठीक है, और इसी के साथ उसके साथ हम लोग विशेष रूप से खाद में गोबर खाद का प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा,
2: गोबर खाद को जुताई करने के बाद, एक दो जुताई के बाद गोबर खाद की को हम लोग पूरे खेत में फैला देते हैं। फैलाने के बाद 2-3 बार उसको जोत करके पाटा लगा देते हैं, जिससे खेत के चारों ओर या हर जगह उसकी मात्रा उपलब्ध हो जाती है।
1: जी हाँ,
2: और उसके बाद फिर हम लोग किसी भी बीज को की बुआई करते हैं।
1: जी हाँ, यहाँ पे एक और बात आता है, चूंकि मिट्टी से जुड़ा हुआ मामला है और कोई भी फसल का तैयार होने में, आमदनी होने में मिट्टी का खेती बाड़ी में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो मिट्टी का जो जांच है सरकार भी उसमें पूरा जोर दिए हुए है, सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में भी, और मिट्टी का जांच आप करवाए हैं?
2: मिट्टी की जांच प्रत्येक किसान को करवाना चाहिए।
1: जी,
2: मैं करवाता हूँ
1: जी,
2: क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व है
1: जी,
2: और हर एक फसल के लिए अलग अलग तरह के फसल के पोषक तत्वों की आवश्यकता
1: होती है।
2: और यदि हम मिट्टी का जांच नहीं कराएंगे तो फसल विशेष में उस पोषक तत्व की कमी होने से वह उसका

0: पौधा ठीक नहीं हो पाएगा, पौधा ठीक नहीं होगा तो उपज नहीं होगा। तो मिट्टी के जांच कराने से हम समुचित मात्रा में पौधे के पोषक तत्व को दे पाते हैं,
1: जी हाँ
0: जिससे हमारी फसल की पैदावार अच्छी होती। बहुत ज्यादा खाद, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते। इस क्षेत्र के किसानों की एक बड़ी उपलब्धि है कि रासायनिक खाद का उपयोग अधिक ना करके कम से कम न्यूनतम रूप में करते, जिसके कारण खेतों का पोषक तत्व अभी बरकरार है। गोबर खाद का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जो अभी के लिए क्या एक खाद या जैविक खाद से जो सरकार की ओर से कदम उठाया गया है, तो हम लोग करीब करीब जैविक खाद की ओर ही मुखातिब हैं, जिससे गोबर का प्रयोग अधिक करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग कम करते हैं। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम तो हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों की अपेक्षा या दूसरे जगहों की अपेक्षा कम हुई है।
1: यानी आप ज्यादा जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। आप जैविक खाद के इस्तेमाल में हम देखते हैं कि बीमारी आने की समस्या कम होती है, और खासकर गर्मी के मौसम में मिट्टी का जो नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो बरकरार रहती है।
0: जी हाँ
1: एक मिट्टी का तो आप बात हम कर लिए, इसमें एक और सबसे मुख्य चीज आता है बीज का चुनाव।
0: जी हाँ
1: बीज किस तरह आप चुनते हैं कि किस तरह का
0: जी
1: बीज
0: हाँ
1: होना
0: मुकेश जी,
1: चाहिए?
0: ऐसा है कि बीज का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। यदि हम अच्छे और उत्तम बीज का चयन नहीं करेंगे तो हम जितना मेहनत करते हैं उस रेशियो में हमारा पैदावार नहीं होगा, और पैदावार नहीं होगा तो हमारी जो आमदनी है वह घट जाएगी। तो हम लोग बीज का चयन करते हैं। बीज का चयन करने में हाइब्रिड बीज का प्रयोग हम लोग अधिक से अधिक करते हैं। इसके लिए जैसे भिंडी, भिंडी बीज में जो ये है उसमें पहला है किस्म है अंकुर कंपनी का, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है नोवेल, चौथा है नामधारी। ये सारे करीब करीब अच्छे ही बीज हैं। हम लोग जो लगाते हैं, कभी नोवेल लगाते हैं तो कभी रोहिणी तो कभी अंकुर लगाते हैं, और इनमें से जो रोहिणी की उपज इन सबों से, मैंने मेरे ख्याल से कुछ कुछ या मेरे खेत के लिए सुटेबल रोहिणी अधिक हो अच्छा होता है, और इसलिए हम करीब करीब रोहिणी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। कभी कभी चूंकि हर एक साल एक ही फसल नहीं हो पाता ढंग से, तो उसको बदल बदल के कुछ में करने से ज्यादा लाभदायक होता है।
1: जी एक बात है, जब आप बीज लेने जाते हैं कोई विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं, या आसपास आपके से भी बड़े कोई किसान है उनसे सलाह लेते हैं, या दुकानदार से ही सलाह लेते हैं, क्या बोलते हैं कि क्या बीज दीजिए, उसमें क्या होना चाहिए गुण?
0: पहले तो था किसान परंपरागत रूप से खेती किया करता था,
1: जी
0: और परंपरागत खेती में किसान को जितना मेहनत या जितनी पूंजी लगाता था उतना नहीं हो पाता था।
1: जी
0: तो धीरे धीरे लोगों में जानकारी, शिक्षा, मुख्य रूप से शिक्षा का प्रभाव बढ़ा। शिक्षा का प्रभाव बढ़ने से समय में बदलाव आया। इसके लिए बहुत सारे ये सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, किसानों के द्वारा जो 5-7-10 किसान शाम के समय इकट्ठा होकर के गांव में एक स्थान पर किसान चौपाल या किसान चौपाल के नाम से जाना जाता है, वहां अपने द्वारा किए गए खेतियों की चर्चा किया करते थे कि मैं इस फसल को लगाया था, इसकी उपज ये हुआ, उसमें ये दवा, इतने पानी, इतना ये किया तो इसमें ये उपज हुआ। तो पहले तो एक दूसरे से आदान प्रदान करके ही लोग किया करते थे। साथ ही शाम के समय आकाशवाणी का एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा विविध क्षेत्रों से जिले के किसानों से जानकारी प्राप्त करके और उसे किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे किसान लाभान्वित होता है, उसके अनुसार खेती भी करता है।
1: और खेती बाड़ी करके आप संतुष्ट हैं?
0: जी हाँ
1: तो केदार जी, आपने इतना बढ़िया जानकारी हमारे श्रोता भाई बहन को दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश।
2: तो अभी हम लोगों ने जानकारी सुना केदार यादव से, जो कि बता रहे थे खेती बाड़ी में गोबर खाद का महत्व क्या है, और इनसे बातचीत करते हैं मुकेश कुमार। तो कितना बढ़िया इन्होंने बात बताया कि गोबर खाद के माध्यम से जब ये खेती बाड़ी करते हैं तो जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति जो रहा है वो जो है कि बढ़िया रहा है, लंबा समय तक बनल रहा है। तो ये चीज़ बतेले केदार यादव। और एक बात है कि प्राकृतिक खेती की जब हम बात कर रही है तो प्राकृतिक खेती में एकरे पे जोर देवल जा है कि रासायनिक खाद जो है, जो रासायनिक खाद है ओकरा हम एकदम इस्तेमाल

करिए, हम इन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। आप प्राकृतिक खेती में आवे है गोबर खाद होले, केचुआ खाद होले, गौमूत्र होले, या नीम के जो हम इन बनावे ही है कीटनाशी बतना बनावे ही है, नीम के करंज के जो कीटनाशी बनावे ही है वो एकर में होले। तो प्राकृतिक खेती के जब जो किसान है प्रयोग कर रहा है तो एकर में सबसे बड़ा बात ई हो जा है कि एकर में जो पर्यावरण जो है वो जो है संतुलित रहा है, बढ़िया पर्यावरण के भी हमीन रख रखाव कर रही है एकर में, और हमीन के जे भी चीज उपजे है एकर में लागत में भी एकर में कमी आवा है। और एक बात है कि किसान जो है कोई भी चीज अगर है योजनाबद्ध तरीका से करे, सावधानी पूर्वक करे और अभी जे आधुनिक विधि के प्रयोग करके करे तो हमीन के देखा खेती बाड़ी में मुनाफा ही मुनाफा है। तो आरेकर लगी है कि सबसे पहले तो अपन माटी का, जैसा कि मैंने बात कर ली कि माटी के सेहत के सुधार लेवा सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ा। हम इन्हें बोले कि एक तुरंत एकदम प्राकृतिक तरफ ही बढ़ जा, संतुलन की स्थिति थोड़ा होवे के चाहिए कि हमीन की उपज भी होवे के चाहिए ही, लेकिन धीरे धीरे ही सही हमीन प्राकृतिक खेती की तरफ हमीन के बढ़े के चाहिए, जेकर से हमीन के देखा कि जे भी चीज उपजते स्वादिष्ट और पौष्टिक वहां से उपजते, और हमीन के जब स्वादिष्ट और पौष्टिक चीज और हमीन के आहार में जब शामिल होते तो एकर से देखा हमीन के रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बनल रहता है और हमें कोई भी बीमारी से आसानी से एकर से लड़ सकेंगे। तो भाई कार्यक्रम में इतना हमीन के पास समय जरूर है कि हमीन एगो गीत भी सुन सकेंगे, तो सुने ही प्यारा सा गीत।

0: खेती बारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: आकाशवाणी का रांची केंद्र है, 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। सीएससीपी के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है और रबी मौसम में तेलहन फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि 15 से 24 जून तक विशेष नामांकन अभियान चलाकर 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना, बस कुछ ही देर में।

तो बहनों, संध्या के 6:03 हो रहे हैं और हाजिर हूँ कार्यक्रम अंगना में आपकी सखी वंदना अर्चना। तो सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, गर्मी तो बहुत थी और मौसम शाम से ही सुहाना था और इस बारिश की झमाझम बारिश से मौसम और भी सुहाना हो गया है। इस तपती गर्मी से फिर से जीवन में तरोताजा महसूस होने लगा है और राहत भी हुई है इस तपती गर्मी से। बारिश की बूंदों ने मन को फिर से हरा भरा कर दिया है। तो आइए हम भी इस मौसम का मजा उठाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: किसे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: भानु, हम महिलाओं के लिए बड़े से बड़े सपने देखना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि हर समय हमें एक साथ कई काम करने पड़ते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो न कि सिर्फ घरेलू कर्तव्यों को निर्वाह करती है, बल्कि घर से बाहर जाकर भी काम करती हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ऑफिस या कोई और भी कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं। साथ ही साथ उन्हें घर भी देखना होता है, घर में जो लोग होते हैं उनका भी ख्याल रखना होता है। तो हम महिलाओं के कई ऐसे काम हैं जो जिम्मेदारी पूर्वक होते हैं। घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। और साथ ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उनकी कोई भी हमारी जो कोई भी जिम्मेदारी है वह ना छूटे। और इसी वजह से

ये महिलाएं हैं जिन्हें कई सारी परेशानियां होती हैं, क्योंकि दिन भर की थकान से वो थक जाती हैं, तो कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर हम इस व्यस्त जीवन में थोड़ा सा अगर समय निकालकर योग करें तो उससे हमारे जीवन में बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो योग होता है वह व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में शांति और सुकून पाने का एक साधन है। बहनों, योग न सिर्फ हमारे शरीर को लचीला बनाता है बल्कि उससे कहीं अधिक लाभ पहुंचाता है। यह मन को शांत और संतुलित करता है। जो कई ऐसी महिलाएं हैं जो डेस्क जॉब करती हैं, यानी एक जगह बैठकर जिन्हें काम करना पड़ता है, उन्हें शारीरिक दर्द होता है, तो योग के द्वारा हम उस दर्द को दूर कर सकते हैं। साथ ही मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में और कार्य में संतुलन स्थापित होता है। साथ ही साथ अत्यधिक काम करने में भी मदद मिलता है। ऑफिस का काम हो या घर का, दोहरी जिम्मेदारी के बीच जो योग होता है, जो हमारे शरीर में तनाव वाले हार्मोन जो होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। तो योग हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ लगातार कई घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहने के कारण या कंप्यूटर लैपटॉप पर लगातार काम करने से पीठ, गर्दन या कंधों में होने वाले दर्द को भी दूर करता है। इसमें भी योगासन बहुत ही प्रभावी होता है। साथ ही साथ ऊर्जा और कार्यक्षमता में भी वृद्धि कराता है। नियमित योग अभ्यास से हम प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और दिन भर तरोताजा महसूस होता है। साथ ही साथ काम पर भी हमारा ध्यान केंद्रित होता है, क्योंकि अगर हम तनावग्रस्त रहेंगे तो काम पर भी हमारा सही तरीके से ध्यान नहीं जाएगा। साथ ही जो कामकाजी महिलाओं में खराब जीवन शैली के कारण हार्मोनल असंतुलन रहता है, ये एक आम समस्या है, पर योग के द्वारा इस असंतुलन को हम ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी कई ऐसी तकलीफ हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं। साथ ही यह जो योग से है, जो नियमित अभ्यास से रक्त, यानी जो आजकल आम बात है कि बीपी का जो प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हृदय से जुड़ी कई सारी समस्याएं या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी योग जो होता है वो हमें मदद करता है। साथ ही साथ एकाग्रता में भी सुधार आती है। योग करने से तनाव और चिंता से भी राहत होती है। और जो योग होता है वो अनिद्रा की जिनको भी समस्या होती है उसको दूर करता है। यानी योग करने से हमें नींद बहुत अच्छी आती है, और हर किसी के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही से नहीं सोएंगे तो हमें दिन भर अच्छा महसूस नहीं होता है। साथ ही साथ सुस्त या तनाव ज़्यादा महसूस होता है, तो अगर योग करते हैं तो नींद भी अच्छी आती है, जिससे अच्छी नींद होती है और काम में भी बेहतर तरीके से भी काम करते हैं। तो हम इस पर आगे और भी बातें करेंगे, पर अभी आइए सुनते हैं एक वार्ता। महिलाओं का स्वास्थ्य और उनका खान पान, वार्ताकार है राधा मिश्रा, तो आइए सुनते हैं। मगर उससे पहले सुनते हैं जरूरी संदेश को।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: बहनों, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ राधा मिश्रा जी, जो महिलाओं के संतुलित आहार के बारे में विस्तार से बताएंगी। तो राधा

0: पोहा ऐसा करके ऐड कर सकते, फल होने चाहिए, दूध होने चाहिए, ये सारे स्रोत अगर आप एक खाने में एक टाइम के खाने पे ऐड करते तो इसको हम संतुलित आहार कहेंगे।
1: अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि ये जो संतुलित आहार है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होती है?
0: नहीं, वैसे तो ये संतुलित आहार महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नहीं होते, सबके लिए सेम ही होता है, बट जैसे महिलाओं के हर स्टेजेस में या हर स्तर पे कहेंगे हम काफी बदलाव आते हैं, तो वहां जाके थोड़ा महिलाओं का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए उनको अपने खान पान पे पुरुषों के मुताबिक। ऐसे तो जनरली सबको या फिर हम कहेंगे कि सामान्य तौर पर सबके लिए एक ही होते हैं, जैसे लोगों को अच्छी मात्रा में सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन या डेयरी के स्रोत अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए, संतृप्त वसा या ट्रांस वसा, अत्यधिक सोडियम या अत्यधिक चीनी के उपयोग से बचना चाहिए हमें।
1: और जैसे होता क्या है कि महिलाओं के जीवन में कुछ बदलाव भी आते हैं समय समय पे, तो उस समय खान पान पर क्या ध्यान देना चाहिए?
0: समय समय पर बदलाव आते हैं, जैसे मासिक धर्म हो गया, गर्भ अवस्था हो गई या फिर मासिक धर्म की समाप्ति पे। अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि आयरन का बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो उस टाइम उनको आयरन के स्रोत पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जब गर्भ अवस्था की बात आती है तो बच्चे को पोषण माँ के खान पान से ही मिलता है, तो माँ को ऐसा करना चाहिए कि वो अपना खाना जो है एकदम संतुलित आहार, जैसे हर तरह के फल सब्जियां, साबुत अनाज उनको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। बच्चों को कैल्शियम चाहिए, उनके दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन डी चाहिए होता है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, या फिर बच्चों को जब वो माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस समय उनको एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम की डेफिशिएंसी हो सकती है, उससे भी वो बचाव करता है।
1: तो अभी जैसे आपने कहा कि मासिक धर्म शुरू होने पर किशोरियों को अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, आयरन लेनी चाहिए, तो आयरन के क्या क्या स्रोत हैं वो हमारी बहनों को बताइए।
0: आयरन के स्रोत में आप हरी सब्जियां जैसे अमरंथ वगैरह, पालक हो गए या खजूर हो गया, या फिर जैसे आप तिल के जो बीज होते हैं उनको अपने खान पान में शामिल कर सकते, गुड़ ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, और अंडे, खजूर, आजकल तो ब्रेड वगैरह भी काफी आयरन से फोर्टिफाइड होकर हमको मिलते हैं।
1: और ये जो हम लोग खान पान लेते हैं इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, तो उसे भी हम उचित मात्रा में लेंगे तो ही फायदा होगा, तो उसकी मात्रा के बारे में आप बताइए।
0: मात्रा की अगर बात करें तो अगर हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्राएं होती हैं, तो अगर हम जैसे कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत हाई कंसंट्रेशन, बहुत अधिक तौर पे पाया जाता है, और उनका काम भी बहुत ज्यादा ही होता है हमारे बॉडी में। जैसे कैल्शियम जो है वो मस्कुलर फंक्शन मेंटेन करता है, दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है, और तो उनके फॉर्मेशन पे भी मदद करता है। और साथ ही साथ जब महिलाओं का जो जब मासिक धर्म की समाप्ति होती है उसके 50% जो है कैल्शियम लॉस शुरू हो जाता है, तो हमको क्या चाहिए होता है कि वो महिलाएं अपने 30 वर्ष की आयु से ही कैल्शियम इंटेक को बढ़ा लेना चाहिए। कैल्शियम इंटेक आपका जो रहना चाहिए वो अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको 850 mg कैल्शियम पर डे लेना चाहिए। अगर कोई महिला अगर गर्भावस्था में है या बच्चे को फीड करवा रही है तो उनको 1000 से 1200 mg कैल्शियम हर दिन लेना चाहिए। अगर उनके स्रोतों की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें दूध, चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे हो गई भिंडी, पालक और ड्रमस्टिक जो हमें सहजन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आमंड्स वगैरह से मिलता है। फिर अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे तो ये क्या करता है कि हमारे वैसे सेम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, बोन के फॉर्मेशन में मदद करता है, क्योंकि एक टाइम के आते आते बोन जो होते हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाते, काफी टेंडर हो जाते हैं, तो इस वजह से विटामिन डी भी हमको लेना चाहिए, अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। वैसे तो विटामिन डी हमको सूरज से मिल जाता है, सूरज की किरणों से मिल जाता है, बट उतना, और आजकल तो काफी पॉल्यूशन वगैरह है जिसकी वजह से हम हमेशा नहीं रह सकते, या फिर तो इसके लिए हमको अपने खाने में कम से कम 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी लेना चाहिए, जिसके स्रोत है जो ऑयली फिश हो गए और अंडा और फोर्टिफाइड मिल्क, फिश लिवर ऑयल, और मछलियों में जैसे ट्यूना, सार्डिन्स, ये सब मछलियां हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के लिए आयरन, क्योंकि महिलाएं ना अपने खाने पे ध्यान नहीं देती और ऐसे कुछ भी खा लेती हैं खाना, तो हमको चाहिए कि महिलाएं का आयरन देख भी नहीं पाती, उनको पता भी नहीं चलता उनके खाने से आयरन कब चला जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है हमको कि आयरन अच्छी मात्रा मिले और आयरन को अच्छी मात्रा में ले, और साथ ही हमको

0: विटामिन सी के सोर्सेज भी अपने डाइट में ऐड करने चाहिए ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। जिसके लिए हम लोग तिल के सीड्स, जागरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मीट, खजूर, अंडा, और पहले मैंने बताया आजकल सब कुछ फोर्टिफाइड होके भी मिलता है तो बाजार से हम वो भी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ। फिर हम बात कर सकते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी आजकल जैसे तो कोरोना टाइम है तो विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसको हमको डाइट में ऐड करना ही चाहिए ताकि ये जो इन्फेक्शंस हमको बीमार करते हैं उनसे मदद करने में ये हेल्प करता है। साथ ही एक प्रोटीन होता है कॉलेजन होता है, उसको भी विटामिन सी बनाने में मदद करता है। नॉर्मली लोगों को अगर कोई नॉर्मल है तो उनको 57 mg पर डे का विटामिन सी लेना चाहिए। अगर कोई महिला गर्भावस्था में है या फिर कोई नर्सिंग मदर है तो उसको 60-80 mg विटामिन सी हर दिन अपने डाइट में लेना चाहिए। उसके सोर्सेज होते हैं जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया। और जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन का फिर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सेल्स के निर्माण में मदद करता है क्योंकि हमारे बॉडी में हर दिन सेल्स बनते हैं और उनका रिपेयर होता है और वो स्क्रीप भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम अच्छे से अच्छे मात्रा में प्रोटीन का अपने डाइट में शामिल करें।
1: बिल्कुल।
0: तो हमको 55 mg प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए और 55 ग्राम प्रोटीन, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 50-80 ग्राम mg हर दिन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सही है। और उसके बाद है, कभी कभी होता क्या है कि कुपोषित हो जाते हैं महिलाएं, है ना, तो उस कुपोषण से बचने के लिए हाँ। वो क्या करें कि वो अच्छे रहे, स्वस्थ रहे?
0: अगर महिला जैसे कुपोषित हो जाती हैं क्योंकि वो जस्ट बिकॉज खाना पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो उनको चाहिए कि पहले तो जो मैंने न्यूट्रिएंट्स के जितना बताया उनको उनके डाइट में शामिल करना चाहिए। और उनको कम से कम अपना अगर पूरे दिनचर्या की बात करेंगे हम उनकी, तो उनको कम से कम 47% हरी सब्जियां अपने डाइट में लेनी चाहिए, 45% दाल अपने खाने में ऐड करना चाहिए, 46% फलों को शामिल करना चाहिए और 36% जो भी प्रोटीन के सोर्सेज हो गए जैसे मीट, मछली, अंडा, इन सब चीजों से अपना डाइट को मेंटेन करना चाहिए। फिर एक न्यूट्रिएंट और रह जाता है जो कि फॉलिक एसिड होता है, जो कि बच्चों के लिए और साथ ही साथ माँ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर जैसे कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी भी काउज होती है, ये को भी लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। तो इसके लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ड्राई बीन्स, साबुत अनाज या फिर जैसे ब्रोकली हो गया, इन सबको अपने खान पान में ऐड कर सकते हैं और इसका नॉर्मल मात्रा में लेना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल महिला है तो इनको 300 लेना चाहिए और अगर प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है तो इनको 500 mg पर डे लेना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो आप तो सभी के बारे में बता दें कि कैसे शारीरिक बदलाव आते हैं, उस समय क्या खाना चाहिए, गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, मासिक धर्म जब समाप्त होती है उस समय क्या खाना चाहिए, शुरू के बारे में तो बताएं, लेकिन जब मासिक धर्म समाप्त होने लगता है तो उस समय मैंने महिलाओं को क्या ध्यान देना चाहिए?
0: महिलाओं को देखना चाहिए क्योंकि वहां पे बोन डेंसिटी भी घटने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस घट जाते हैं। तो महिलाओं को चाहिए कि फोलिक एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन वगैरह, बेसिकली कैल्शियम का रिसाव होने लग जाता है हड्डियों से, तो उनको चाहिए कि कैल्शियम के स्रोत अच्छे से अच्छे मात्रा में अपने डाइट में शामिल करें।
1: बिल्कुल। तो आप तो सभी चीज बता दी, लेकिन इसके बाद भी आप हमारी महिलाओं को क्या बताना चाहेंगी?
0: मैं ये बताना चाहूंगी कि महिलाएं घर की धरोहर होती है, उनके स्वास्थ्य पे जो है पूरे घर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। फिर अगर वो खुद ही बीमार रहेंगी तो पूरे घर को फिर वो कैसे देखभाल करेंगी? तो इस वजह से चाहिए कि वो अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे और पूरे घर के स्वास्थ्य का ध्यान रखे।
1: तो राधा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और संतुलित आहार को लेकर कि महिलाएं संतुलित आहार कैसे लें और हर स्थिति में, हर स्टेज में वो स्वस्थ रहें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण, महिलाओं का स्वास्थ्य और उनका खान पान। भेंट वार्ताकार थी राधा मिश्रा, उनसे बातें कर रही थी अंजलि सिन्हा। और उम्मीद करती हूँ कि इस वार्ता से आप लोगों को जरूर फायदा हुआ होगा। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, तो आइए चलते चलते ये प्यारा सा नगमा सुनते हैं।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए महबूब की मेहंदी फिल्म का ये नगमा। संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

मोहब्बत ने कितने

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में बॉबी फिल्म का ये नगमा, और आइए आगे आपको सुना रहे लता मंगेशकर की आवाज में गाए इस गीत को।
2: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे राज्य केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक बिक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल की। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। CACP के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड के कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड के किसानों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है।
1: झारखंड सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे फर्ज बनता है हमारा किसान का समस्या चैलेंजेस उसके सामने रखना।

0: और भारत सरकार बीइंग और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो गार्डियन के रूप में उनसे रिक्वेस्ट करना हमारा किसानों के हित में अपना पॉलिसी एमएसपी में निर्धारण किया जाए, ये प्रयास हम लोग जरूर किया है।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनीनगर नगर निगम की 93 लाख रुपए की एक सड़क योजना को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए।
2: नगर निगम के द्वारा एक योजना की स्वीकृति दी गई और योजना का नाम रखा गया बबलू सिंह के घर से मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण। मेरी आपत्ति इस मायने में है कि एक ऐसा व्यक्तित्व या एक ऐसा चरित्र जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हो उसका नाम योजना से जोड़ा जाए, यह कदापि उचित नहीं हो सकता।
1: अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। मंत्री ने साइकिल वितरण योजना में तेजी लाने तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को नए स्वरूप में अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक में जनगणना कार्य मतदाता मैपिंग और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने 13 और 14 जून को मतदाता मैपिंग के लिए आयोजित विशेष शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार तथा सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के तहत कल रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची में यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड रखा गया है। माय भारत रांची द्वारा सहयोगी संस्था प्रोजेक्ट प्वाइंट ओडिशा के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा पेशेवर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जामताड़ा जिले के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि किसान सम्मान निधि से किसानों की कृषि लागत कम हुई है और उन्हें समय पर खेती करने में सहायता मिल रही है।
3: पीएम किसान सम्मान निधि है जो जिले में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। अभी खरीफ में आप देखिए तो उनको खाद बीज इनपुट खरीदने के लिए उससे बहुत मदद मिलती है। राज्य सरकार की भी योजना में आप देखिए मिलेट मिशन है, इसके अलावा बीज उत्पादन में भी सब्सिडी दी जा रही है। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से 100% सब्सिडी पे बीज भी अभी दिए जाने हैं। उनकी आय दुगुनी से भी ज्यादा हो इसके लिए जिला कृषि कार्यालय प्रयत्नशील है।
1: गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने रिक्त पारंपरिक ग्राम प्रधान पदों को स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार शीघ्र भरने का निर्देश दिया। हजारीबाग में आयोजित आम उत्सव में महिला किसानों और आम उत्पादकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कहा कि मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से किसान आम बागवानी अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
4: प्रोडक्शन तो है, लेकिन जो उसकी वास्तविक कीमत है वो किसानों को नहीं मिल पाती। उनकी बेहतर कीमत दिलाने के लिए विकास आयुक्त के द्वारा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया, जिसमें एक ओर व्यापारी वर्ग है, दूसरी ओर उत्पादक गण है। सामंजस्य को बनाने के लिए उसके लिए मेले का आयोजन किया गया है।
1: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आज झारखंड में प्रवेश कर लिया है और जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज समेत धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विज्ञान विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मॉनसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में धनबाद होते हुए आगे बढ़ रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड के और अधिक क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है।
5: मॉनसून का आगमन एक सुखद समाचार इसमें लेके आया है। झारखंड में 12 जून को मॉनसून पहुंचता है और मध्य भाग रांची समेत में 15 तारीख को मॉनसून पहुंचता है। पूर्वी भाग है वहां पे 12 जून को अपने सही समय में पहुंचा है और अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तार झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग को देखने को मिलेगा।
1: झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत दर्ज की। कप्तान उत्कर्ष सिंह ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक विक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स की शानदार जीत। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
7: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय में पतंजलि योग समिति सहित कई सरकारी संस्थानों में भी योग शिविर आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शहर के बिगन देवी स्मृति भवन में पतंजलि योग समिति द्वारा संचालित नियमित योग शिविर का संचालन कर रहे प्रशिक्षक उपकार गुप्ता से हमने योग के विषय में जानना चाहा, तो उन्होंने योग के लाभ के विषय में जानकारी दी।
2: मैं रामदेव बाबा के

0: से ट्रेनिंग लेकर यहाँ शुरू किया हूँ और यहाँ से योग करके बहुत सारे भाई बहन बहुत फायदा उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग का स्थान पूरे विश्व में जन जन को जागृत किया है, इससे हमारे कक्षा के लोग को भी बहुत सारा फायदा हुआ है। बहुत लोग को बहुत सारी असाध्य बीमारियां थी, वो सब ठीक हो रहा है। मैं गढ़वा वासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि योग में जुड़िए और प्रतिदिन योग कीजिए।
1: इसी तरह जिला मुख्यालय स्थित बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में भी नियमित योग शिविर का संचालन किया जा रहा है। इस योग शिविर में अनेकों युवा पुरुष और महिलाओं को भाग लेते देखा गया। हमने यहाँ नियमित योग शिविर में भाग ले रहे एक युवा धीरज कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया,
2: जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री योग करके निरोग रहने का अपील किया है, तब से हम बिरसा मुंडा पार्क में आकर प्रतिदिन योग करता हूँ। हम पहले हॉस्पिटल का चक्कर लगाया करते थे, लेकिन अब हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है। योग करने से मैंने 3 वर्षों में 10 किलो वजन कम किए हैं। योग करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है।
1: जिले में पिछले दिनों दिशा की बैठक सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में गढ़वा जिले में चल रही विशेष रूप से सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की गंभीरता से समीक्षा की गई। वहीं कई ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा कर उनके समाधान के लिए पहल करने का संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया,
3: आज मुख्यतया पिछले मीटिंग में जो प्रश्न उठाए गए थे या जो जिज्ञासा प्रकट की गई थी, उन प्रश्नों के उत्तर की समीक्षा की गई और माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र में हो रही योजनाओं की प्रगति की भी चर्चा की। जिन विभागों के प्रगति प्रतिवेदन में कमी पाई गई, उन कमियों की ओर उन विभागों का ध्यान आकर्षित कराया गया। कमेटियां भी बनाई गई है ताकि जांच प्रतिवेदन प्राप्त करके यदि कोई पदाधिकारी दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, ताकि भविष्य में उन कमियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा सके। किसानों को धान का पैसा अभी भी नहीं मिला है, उन किसानों को धान का पैसा का भुगतान शीघ्र कराया जाए। जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सड़कों की गुणवत्ता यदि सुनिश्चित नहीं की गई है तो उसके लिए दोषी पदाधिकारियों की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई, या सरकार के द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के द्वारा दी गई माध्यम से उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
1: गढ़वा जिले में इस समय लोगों को कड़ी धूप का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि बीच बीच में हुई बूंदाबांदी और तेज हवाओं के कारण तापमान गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है, लेकिन लगातार कड़ी धूप से लोग काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लोग बेसब्री से मानसून के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
4: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज।

0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:30 हो रहे हैं। पेश है खेल गतिविधियों पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। संकलन एवं वाचन दिया है परमेंद्र कुमार मिश्रा ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।
1: खेलेंगे शान से कार्यक्रम खेलेंगे शान से के इस आज के ताजे अंक में आप सभी श्रोताओं, खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वीकार करें अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र कुमार मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। आज के इस अंक में बातें करेंगे बॉक्सिंग खेल की और जानेंगे इस खेल से जुड़ी जानकारियों को। श्रोताओं, कोई भी खेल शारीरिक सौष्ठव के साथ साथ बौद्धिमता का विकास तेजी से होता है। बॉक्सिंग भी जूडो, कराटे, स्विमिंग, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे खेल विधा की तरह अपने मांसपेशियों में नियंत्रण संतुलन स्थापित कर उचित प्रशिक्षण सही मार्गदर्शन से इस स्पर्धा में एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। साथ ही व्यायाम से सुडौल शरीर और एक आकर्षक व्यक्तित्व भी बनाया जा सकता है। बॉक्सिंग सिर्फ एक खेल नहीं, यह आत्मविश्वास और दृढ़ता का प्रतीक है। जब रिंग में खिलाड़ी कदम रखता है तो हर बार गिरना, हर बार उठना उन्हें और भी मजबूत बनाता है। खिलाड़ी सीमाओं को चुनौती और डर को मात देता है और हर दिन एक बेहतर दिन की तरह बनता है। बॉक्सिंग सिखाती है कि हार से नहीं बल्कि संघर्ष से सफलता मिलती है। हार और जीत का फैसला कई कारकों पर निर्भर करता है। बॉक्सिंग में जज हर राउंड में पंचों की संख्या, तकनीक, रक्षा और आक्रामकता को देखते हैं। जो खिलाड़ी अधिक अंक जुटाता है वही विजेता बनता है। कभी कभी दोनों खिलाड़ियों के अंक बराबर होते हैं, तब टाई का निर्णय होता है। फैसले में साहस, समर्पण और हर हरकत का महत्व होता है। आम तौर पर बॉक्सिंग के मुकाबले 3 मिनट के राउंड में होते हैं और हर मैच में कुल 3 से 12 राउंड तक हो सकते हैं, लेकिन यह मुकाबले के स्तर और नियमों पर निर्भर करता है। प्रोफेशनल मुकाबले में अक्सर हर राउंड 3 मिनट का होता है और बीच में 1 मिनट का आराम होता है। बॉक्सिंग खेल के लिए एक बॉक्सर आमतौर पर हल्के और आरामदायक शॉर्ट्स पहनते हैं, साथ ही बॉक्सिंग ग्लव्स, माउथ गार्ड और एड़ी तक आने वाले मोजे और शूज पहनते हैं। कपड़े हल्के और शरीर की गति को रोकने वाले नहीं होने चाहिए ताकि बॉक्सर पूरी तरह से आराम से अपनी क्षमता दिखा सके। शुरुआत के स्तर पर खास शौकिया या ट्रेनिंग के दौरान बॉक्सर अक्सर हेलमेट पहनते हैं ताकि सिर की सुरक्षा हो सके, लेकिन प्रोफेशनल मैचों में आमतौर पर हेलमेट नहीं पहना जाता क्योंकि जज और दर्शकों को बॉक्सर के सिर के मूवमेंट साफ दिखने चाहिए। बॉक्सिंग में पंच का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि इसके जरिए स्कोर किया जाता है और मुकाबला जीता जाता है। हर पंच एक रणनीति का हिस्सा होता है जिससे प्रतिद्वंद्वी को कमजोर किया जाता है। सही पंच से न केवल अंक मिलते हैं बल्कि प्रतिद्वंद्वी के संतुलन और आत्मविश्वास को भी तोड़ा जा सकता है। इसलिए पंच की ताकत और सटीकता दोनों ही महत्वपूर्ण है जीत दिलाने के लिए। बॉक्सिंग के तकनीकी स्तर और व्यवहारिकता कैसे कार्य रूप प्रदान करती है इसके बारे में जानते हैं बॉक्सिंग के खिलाड़ियों और एक्सपर्ट की राय। कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है ग्राउंड रिपोर्ट। बॉक्सिंग के तकनीकी स्तर, व्यवहारिकता कैसे कार्य रूप प्रदान करती है इसके बारे में जानते हैं बॉक्सिंग के खिलाड़ी और एक्सपर्ट की राय। कार्यक्रम के इस अगले खंड में आपको मिलवाने जा रहे हैं बॉक्सिंग खेल के जाबाज खिलाड़ी प्रमोद कुमार जी से। इनसे जानेंगे बॉक्सिंग खेल के बारीकियों और अनुभवों को। श्रोताओं, हमारे प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है और खेल के विभिन्न विधाओं में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने सफलता के कई परचम लहराए हैं। आज हमारी बातें हो रही है प्रमोद कुमार जी से, जो बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। प्रमोद जी, आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सूक्ष्म परिचय हमारे श्रोताओं तक पहुँचे।
2: मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं कटकमदार हजारीबाग के निवासी हूँ। क्लास 12th में हम हिंदू प्लस 2 हाई स्कूल हजारीबाग से कम्प्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अभी कॉलेज में एडमिशन करवाना है।
1: तो आप हमें ये बताइए प्रमोद जी कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली?
2: जैसे कि जब हम लोग छोटा थे तो हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे और उसके बाद स्कूल से आने के बाद सिर्फ खेलते रहते खेलते तो हमारे भैया जो थे उन्होंने सोचा कि इधर गांव घर में खेलने से अच्छा कि उसे एक एकेडमी में ट्रेनिंग दिलवाया जाए जिससे वो अपने प्रतिभा को को दिखा सके, ट्रेनिंग के एक सहारे वो अपने फ्यूचर भी आगे जाके बना सके और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। उसके बाद मेरे भैया ने हमें बॉक्सिंग हजारीबाग में सदर थाना के पास, पहले बॉक्सिंग होता था ब्रह्म समाज में, उसमें मुझे एडमिशन करवा दिया और मैं 2019 में एडमिशन करवाया था। उसके बाद वहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और वहां से मैं बॉक्सिंग खेलना स्टार्ट किया।
1: तो अभी आप कहां कहां किस किस खेल प्रतियोगिता में आप हिस्सा लिया और वहां पर आपका जो प्रदर्शन है वो किस तरह का रहा?
2: सबसे पहले मैं 2020 में पहला स्टेट गेम खेला था अपना, जिसमें मेरा कोई मेडल नहीं लगा था सबसे पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम में। उसके बाद वो रांची में खेले थे, मुखर्जी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रांची में। उसके बाद दूसरा गेम हम जमशेदपुर में खेले थे, वहां पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा था। और फिर तीसरा गेम खेले थे रांची में, जिसमें भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल था। फिर चौथा गेम भी रांची में खेला, स्टेट गेम सारा स्टेट गेम है, चौथा गेम भी रांची में खेले थे 2025 में, फाइनल तक खेले थे जिसमें मुझे सिल्वर मेडल एंड बेस्ट चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था पिछले साल। और अब लेटेस्ट मैं मार्च में खेल के आया हूँ, जिसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है।
1: इस तरह से आप अपने कड़ी मेहनत के दम पर अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो इसके अगर हम प्रशिक्षण की बातचीत करें तो आप कितना समय खेल में देते हैं बॉक्सिंग खेल में?
2: बॉक्सिंग खेल हजारीबाग करजंगोड़ में होता है, जिसमें हम सुबह में ट्रेनिंग करते, सुबह में 2-2.5 घंटा ट्रेनिंग करते लगभग। जब गेम आता है तो सुबह शाम दोनों ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है।
1: कितना घंटा समय देते हैं सुबह?
2: सुबह में 2.5 घंटा।
1: यहाँ पर आपके कोच कौन है?
2: हमारे यहाँ पे दो कोच है, एक रविकांत सर है और दूसरे प्रेजेंट टाइम में अभी जो है वो श्री शैलेंद्र प्रसाद कुशवाहा है। अध्यक्ष जो है हजारीबाग के वो माननीय श्री मनीष जायसवाल जी है और सचिव जो है हजारीबाग के वो सुब्रतो सेन रोय जी है।
1: तो इनका कितना सहयोग मिलता है इस खेल में, बॉक्सिंग खेल में?
2: जितना हो सके इन लोग अपना पूरा सपोर्ट करते हैं, जितना भी हो सके मतलब सपोर्ट देने का पूरा प्रयास करते हैं, जितना भी कुछ भी काम पड़े तो इन लोग द्वारा प्राप्त हो जाता है।
1: आप जो बता रहे राज्य स्तरीय जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई और उसमें जो आपने हिस्सा लिया तो उसमें कई मुश्किलें आई होंगी, तो उसके बारे में कुछ ऐसा वाक्य आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे?
2: जैसे कि मुश्किलें तो जीवन में आती जाती रहती है और गेम की बात है, बॉक्सिंग में हम लोग का फाइट ठीक किया जाता है पंच के द्वारा, फाइट करना, लगना, चोटें लगना, चोटें भी लगती है कभी कभी। और ट्रेनिंग के बीच में हम लोग का ट्रेनिंग बहुत हार्ड थोड़ा होता है, तो उसमें भी बड़ा कठिन होता है ट्रेनिंग करना, लेकिन एक समय के बाद ठीक हो जाता है, सब अच्छा लगने लगता है। और कठिनाई की बात करें तो थोड़ा मोड़ा हम लोग का डाइट में थोड़ा कमी हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत नहीं कर पाते।
1: प्रमोद कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि इसके जो बॉक्सिंग खेल के जो तकनीकी बातें हैं वो क्या है?
2: बॉक्सिंग जो होता है वो रिंग में फाइट किया जाता है और जो उसमें दो बॉक्सर्स होते हैं, एक रेफरी होता है, बाहर 5 जज होते हैं। रिंग में बॉक्सिंग जो होता है वो 3 राउंड का होता है, जो 3-3 मिनट का होता है और बीच में 1 मिनट रेस्ट दिया जाता है। और बॉक्सिंग में पंच के द्वारा जो ग्लव्स होता है उसके द्वारा फाइट किया जाता है और उसमें चोटें भी लगते हैं।
1: ये सामान्य सी बात है।
2: सामान्य सी बात। बॉक्सिंग में जो होता है कि जो अगर अटैकिंग करके ज्यादा खेलता है या अपने फुर्ती को ज्यादा अच्छे से दिखाता है और स्पीड उसके अंदर ज्यादा रहता है, तो उसके अनुसार वो जज लोग उनको जज करते हैं और उसके फिर उसको विजेता बनाते हैं।
1: बॉक्सिंग खेल को आपने अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया है, इस खेल के माध्यम से क्या करियर को हासिल किया जा सकता है?

0: बॉक्सिंग स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले स्टेट आप खेलेंगे, स्टेट में गोल्ड आप जीते, फिर नेशनल खेले, नेशनल वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा मंच है। नेशनल खेलने के बाद अगर आप नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको सर्विसेज वगैरह में मौका मिल जाता है, जिससे आप अपना एक करियर भी अच्छा हो जाता है और आप गेम के थ्रू आगे इंटरनेशनल वगैरह खेल सकते हैं, जिससे आप अपने करियर को बहुत अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं।
1: आप उन खेल प्रेमियों के लिए और खास करके जो बॉक्सिंग खेल में आना चाहते हैं या जो खेल विधा में आना चाहते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि गांव घर में बच्चे लोग ज्यादा स्पोर्ट्स के खेलते तो है, बट क्या होता है कि मतलब एकेडमी वगैरह में पर्सनली ट्रेनिंग लेते नहीं है। उनके पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो बच्चों लोग के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए दिखाने के लिए। उनको आप एकेडमी वगैरह में उनको खेलने के पूरे छूट दे, और छूट देने के साथ साथ उन्हें आप मतलब एक सपोर्ट दे, बच्चे को जो गेम में खेलना चाहते हैं उस गेम में उनको भेजे,
1: तब तो निश्चित तौर पर जो है अपना प्रदेश का नाम, घर का नाम, समाज का नाम रोशन करेंगे। और प्रमोद कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने अपना बहुमूल्य और बेशकीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: हमने बात की बॉक्सिंग खेल एसोसिएशन के सचिव सुब्रतो सेन राय से, जिन्होंने बॉक्सिंग खेल से जुड़ी समस्याओं और जरूरतों से अवगत हमें कराया।
3: मैं सुब्रतो सेन राय, हजारीबाग बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव। हजारीबाग में 17 सालों से बॉक्सिंग का खेल चल रही है, जिसमें हजारीबाग के बच्चे राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में बहुत सारे ख्याति प्राप्त किए हैं। और भी अगर हमारे पास संसाधन की कमी है, अगर प्रशासन इसको प्रमोट करे, सहयोग करे इसमें, तो और भी इसमें डेवलपमेंट लाया जा सकता है। जिस तरह से बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है, उसी तरह से अगर बॉक्सिंग को भी प्रमोट करे तो और भी हो सकता है कि हमारे बच्चे, नए बच्चे जो आ रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का खेल में अपना ख्याति प्राप्त करेगी, अपने प्रदेश का नाम रोशन भी करेगी।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है खेल मंत्र। दोस्तों, बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जो शरीर को मजबूत और मन को दृढ़ बनाता है। एक महान बॉक्सर ने कहा था, बॉक्सिंग सिर्फ पंच मारना नहीं बल्कि हर हार से उठकर खुद को बेहतर बनाने का नाम है। कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है सुनो खिलाड़ियों। अपने गुरु, अपने कोच की कही हुई बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि अपनी जीत पक्की हो। अगला सेगमेंट है खेल टिप्स। खेल में रिंग के अंदर आने से पहले थोड़ा पानी पी लें और उन बातों को जरूर याद कर लें जिस तकनीक का सहारा लेकर आपने उन मैचों को जीता। साथ ही प्रतिद्वंदी की हरकतों से सीख लेते हुए वार करें ताकि जीत अपनी सुनिश्चित हो। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले खंड की ओर, जो कि है खेल अपडेट्स। और अब हम जानेंगे खेल जगत से जुड़ी खबरों को और अवगत होंगे देश विदेश की खेल गतिविधियों से और अखबारों में छपी खबरों पर डालेंगे एक नजर। भारत में भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग की शुरुआत होने जा रही है। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन IABF दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6 से 10 जुलाई तक आयोजन करेगा। इस लीग में देश भर के मुक्केबाज शामिल होंगे। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों में मुक्केबाजों के ट्रायल चल रहे हैं। 5 से 7 जून तक रांची में आयोजित प्रतिष्ठित पावर लिफ्टिंग चैंपियन में बोकारो की प्रतिभाशाली खिलाड़ी ज्योति कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उनकी इस उपलब्धि के लिए न केवल बोकारो बल्कि पूरे झारखंड का नाम गौरवान्वित हुआ। इटली के दिग्गज फुटबॉल क्लब इंटर मिलान ने एक ऐतिहासिक सौदा करते हुए अपने लीजेंड डेजान स्टॉकविच के बेटे अलेक्जेंडर स्टॉकविच को खरीद लिया है। 20 साल के अलेक्जेंडर डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन में खेलते हैं। बेल्जियम लीग में उन्हें बीते सीजन सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर चुना गया था। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव लाट की रहने वाली महिला पहलवान काजल ने इंटरनेशनल मंच पर एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाया। काजल ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित इंटरनेशनल रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन। निशांत, नीरज, शौकत और वागिस दिखाएंगे दम। जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड टी20 लीग में आज 2 मैच होंगे। पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स का सामना कोयलांचल सुपर किंग्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में धनबाद डायमंड्स और जमशेदपुर स्टील्स की टीमें आमने सामने होंगी। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभ में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। कार्यक्रम से विदा लेने से पहले हम तो यही कहेंगे चलते चलते कि हर गिरने में छिपा है फिर उठने का बल, बॉक्सिंग सिखाती है हर हार के बाद भी चलने का चल, पसीना बहता है सपनों की राह में, बॉक्सिंग सिखाती है कभी न रुकना राह में। जाते जाते कार्यक्रम का पता आप नोट कर लीजिए। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम खेलेंगे सांसे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन संख्या 825301। कार्यक्रम खेलेंगे सांसे में आज बस इतना ही। अगले अंक में ताजा तरीन खबरों और खेल जगत के खेल गतिविधियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें यानी अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक है विक्रम कुमार रंजन।
4: तो अभी आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे सांसे। संकलन एवं वाचन दिया था परमेंद्र कुमार मिश्रा ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपके चाहत। कार्यक्रम आपके चाहत सुन रहे सभी दोस्तों को आपके रेडियो दोस्त वंदना अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, प्रोग्राम का पहला खत हमने लिया है। इसे भेजा है जामाडोबा धनबाद से। आप हैं बेगम फरीदा रफीक और आप हैं पतरातू से बेसिल खलको, मधु, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्वी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा और परिवार के सभी सदस्य। और इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप हैं पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। तो आइए आप सबों के फरमाइश पर प्रोग्राम का पहला नगमा सुनते हैं।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं अपने रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम विकास जन कल्याण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
2: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसमें संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
3: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाते हैं तो इस कन्वेंशन के बाद के इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
4: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
3: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एम्यूनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन

0: इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड।
1: सब्जी लेते वक्त भाव करते हो ना, और क्लोथ्स लेते वक्त बार्गेनिंग भी, फिर मेडिसिन पे सिर्फ 10% पे सेटल क्यों? नेट मेट्स पे रोज मिलता है 24% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, वो भी जीरो प्लेटफॉर्म चार्जेस और हैंडलिंग फी के साथ। तो फिर समझदारी दिखाओ, नेट मेट्स पे आओ।
0: तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
2: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम

0: लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीन तरह की। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोडमैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोडमैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आप

0: आज का विश्व जान सकेगा। आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैनजी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी। और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था,

0: उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया, जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं, आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है, लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश

0: नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर।
1: सोचो बाइक चलाते हुए अगर छोटा सा एक्सीडेंट या ब्रेकडाउन हो जाए, क्लेम प्रोसेस, पेपर वर्क, इसलिए दीजिए अपने बाइक को स्मार्ट ब्रिज। ICICI लोम्बार्ड टू व्हीलर इंश्योरेंस ऑन आईसेक केरा, ताकि आपकी हर राइड रहे टेंशन फ्री। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एड ऑन जैसे 0 depreciation और रोड साइड असिस्टेंस, इंश्योरेंस को बनाए एफर्टलेस। डाउनलोड आईसेक केरा ऐप नाउ।
0: वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
2: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
2: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ

0: साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
3: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
5: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
4: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
6: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
3: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया।

0: है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।
1: एक

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहने लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस
1: और मुझे
0: नाम
1: वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

इस गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

सुश्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम रजनी गंधा।

तो अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म छलिया में, और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

तो अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को फिल्म दोस्ती में, और आइए आगे आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से। और आज हम सुनेंगे 1985 में आई फिल्म मेरी जंग फिल्म के गीतों को। इस संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। फिल्म को निर्देशित किया है सुभाष घई ने। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में गाए प्रोग्राम का पहला नगमा।

एक लतीफा, सुनता जा और हंसता जा। जीने का सीख तरीका साहिबा और पीने का सीख तरीका। झोप झोप।

0: और आप सुन रहे कार्यक्रम एक फिल्म से, और आज आप सुन रहे हैं 1985 में आई मेरी जंग फिल्म के गीतों को। तो आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं।
1: Come friends to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
2: No!
3: No!
1: Samba?
3: No!
2: No!
1: Rumba?
3: No!
1: Samba?
3: No!
1: Tequila?
3: No!
1: Tango?
3: No!
1: Charleston?
3: No!
1: Ball-

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा

0: विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken Snake Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realising the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jaid Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jaid Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF 2026, a week-long celebration of documentary, short fiction and animation cinema, is all set up to begin on Monday. Addressing a curtain raiser press conference in Mumbai today, Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Magdum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
4: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। यहीं संपन्न होता है हमारा आज का प्रसारण। कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।